भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

बना घर में कि

0: नमो भगवते
1: उत्तम श्लोकाय नमो आर्य लक्षण तीरव्रताय नमो प्रतिक्षुतात्मनोपासितलोकाय नमः साधुवाद निकषणाय।

0: श्री राम
1: जय जय श्री राम
0: जय जय श्री राम
1: जय जय श्री राम
0: नमः।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

नमस्कार, ये आकाशवाणी का विशेष प्रसारण है, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024। श्रोताओं, आप हमें FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा DTH आराधना चैनल और न्यूज़ ऑन AR मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। आज की इस प्रसारण में आपका स्वागत है। आपका दिन सुखद हो।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोता, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद मेहराब जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। जावेद, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, स्वागत है आपका भी। पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा की सातवें जत्थे की अपडेट्स को लेकर मैं हाजिर हूँ। और आज जैसा कि मैं बताऊँ आपको कि पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा कर बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं के की बात करें हम, तो उनके चेहरों पर थकान जरूर थी, लेकिन इससे कहीं अधिक संतोष और आस्था की चमक भी दिख रही है। गुजरात, कोलकाता, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि यात्रा में लंबी कतारें, टोकन के लिए इंतजार और कठिन चढ़ाई जैसी चुनौतियां जरूर है, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद हर कष्ट छोटा हो जाता है। श्रद्धालुओं के मुताबिक यात्रा के दौरान धैर्य की सख्त जरूरत होती है। कई लोगों को टोकन के लिए दिनों और घंटों का इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके ये भी यात्रा का हिस्सा है और उन्होंने प्रशासन से टोकन काउंटर बढ़ाने की मांग की है। ये हम वो बातें साझा कर रहे हैं जो तीर्थयात्री दर्शन कर वापस यहाँ जम्मू लौट आए हैं।
0: जी,
1: जम्मू पहुंचे यात्रियों ने अपनी यात्रा का अनुभव जब साझा किया तो उन्होंने बताया कि बालटाल मार्ग में अब कहीं बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले जहां रास्ते में डर बना रहता था, वहीं अब चौड़े रास्ते, सुरक्षा रेलिंग, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और जगह जगह पर लंगर यात्रा को पहले से कई सुरक्षित और सुविधाजनक बना देते हैं। अब बालटाल कैंप किसी छोटे शहर जैसा महसूस हो रहा है।
0: जी,
1: कई तीर्थ यात्रियों का कहना है कि बाबा बर्फानी की ये यात्रा न सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि सामाजिक समाज को जोड़ने का भी काम करती है। अलग अलग राज्यों से आए लोग एक दूसरे के साथ भोजन करते हैं, मदद और एक दूसरे के साथ रहकर भावना और विश्वास की फलों की मिसाल भी पेश करते हैं। वहीं कठिनाइयों के बीच सेवा सहयोग का अद्भुत संगम भी देखने को मिलता है। वही तीर्थ यात्री ये मानते हैं कि यात्रा के दौरान कठिनाइयां भी जरूर हैं, लेकिन व्यवस्था में आए बदलाव ने सफर को पहले से आसान बनाया है।
0: जी,
1: तीर्थ यात्रियों के लिए मैं बार-बार बताऊं कि ये जानकारी भी है कि SDRF टीम, SDRF जो एक बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने मंगलवार को जम्मू में जागरूकता अभियान चलाया। इसमें अमरनाथ यात्रियों को मानसून के दौरान सुरक्षा बरतने की सलाह भी दी गई। कमांडिंग ऑफिसर मोहम्मद असलम ने तनी रिवर फ्रंट पर पंजीकरण केंद्र में मेगाफोन के माध्यम से जन सुरक्षा से जुड़ी घोषणाएं भी की, जिसमें तीर्थ यात्रा के दौरान तमाम एडवाइजरीज का पालन करने की बात को दोबारा दोहराया भी गया। वही मैं बता दूं आपको कि DGP नलिन प्रभात जो है जम्मू कश्मीर के DGP है, उन्होंने मंगलवार को भगवती नगर यात्री निवास का भी दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा उपायों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए, तीर्थयात्रियों से बातचीत भी कर उनका हालचाल जाना और यात्रा के दौरान आने वाले समस्याओं को लेकर भी जानकारी ली। इस दौरान मौके पर अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जैसा कि जानकारी के मुताबिक कल, जैसा कि हमें कल जानकारी मिली कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी यात्रा की वर्तमान स्थिति पर और सुरक्षा व्यवस्था और तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं की व्यापक समीक्षा भी की है, जैसा आप तक भी ये खबर पहुंची होगी। तो कुल मिलाकर कहें तो जानकारी

0: मुताबिक अभी तक लगभग 1,13,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। मंगलवार शाम को वही खबर है कि मंगलवार शाम को जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से भी 60 घंटे लगभग 3 दिन से ज्यादा के टाइम के बाद इंतजार के बाद गैर पंजीकरण तीर्थ यात्रियों को एक बड़े काफिले को जम्मू की ओर रवाना किया गया, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। श्रद्धालुओं ने खुशी के साथ यात्रा के दूसरे पड़ाव की तैयारी करना शुरू कर दी है।
1: जी।
0: आज बात करें बाबा बर्फानी की तीर्थ यात्रा पर रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या, आज भी एक बड़ा काफिला गया है। अब तक का लगभग का बड़ा काफिला 9,837 तीर्थ यात्री इस पवित्र यात्रा पर आज रवाना हुए हैं, जहां बालटाल के रास्ते 4,480 तीर्थ यात्री रवाना हुए, वहीं पहलगाम के प्राचीन रास्ते से 5,357 तीर्थ यात्री रवाना हुए हैं। यात्रा में पुरुषों की संख्या 6,684 है, वहीं महिलाओं की संख्या 2,730 रही है। इसी तरह से यात्रा में बच्चे 21 शामिल है, साधु 320 है, साध्वी 80 है और ट्रांसजेंडर 2 शामिल है। 381 वाहनों पर आधारित आज का ये काफिला घाटी की ओर अग्रसर है, जहां पहलगाम के रास्ते की तरफ 188 वाहन पहुंच रहे हैं, वहीं बालटाल की ओर 173 वाहन पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ा काफिला आज तक का लगभग बड़ा काफिला पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा की तरफ रवाना हुआ है। तो कुल मिलाकर जो ये आज की जो हमने अपडेट दी उसमें जहां तीर्थ यात्रियों ने अपने जो ख्यालात जो साझा किए हैं उसमें उन्होंने संतोष प्रकट किया है, वही कठिनाइयां जरूर है लेकिन ये सफर चैलेंज का है और उसमें तीर्थ यात्री भी सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का, और प्रशासन भी जैसे मैंने बात की SDRF की, DGP जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने हालात की समीक्षा भी की, व्यवस्था भी की, कुछ एडवाइजरीज पर अमल करने की बात भी की, दिशा निर्देश भी दिए। तो कुल मिलाकर तीर्थ यात्रा जो है वो एक बहुत अच्छे माहौल में यहाँ जम्मू के पहले पड़ाव से आगे घाटी की ओर रवाना हो रही है और आगे भी होती रहेगी। जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद जावेद, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
0: बहुत शुक्रिया।
1: श्रोता, ये थे जावेद मेहरा, जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अपडेट दे रहे थे। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोता, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से मोहम्मद तस्कीन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। तस्कीन, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी शुक्रिया।
0: क्या कुछ अपडेट्स हैं आज मौसम के हवाले से?
1: मौसम बिल्कुल रात में हल्की हल्की, तकरीबन आधी रात तक हल्की हल्की बारिशें होती रही, जिसकी वजह से मौसम बहुत ही सुहाना बना हुआ है आज सुबह से ही। तो लेकिन जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर श्री अमरनाथ यात्रा का सफर है, पवित्र सफर है, तो वो जारी है। और अभी जो बालतल के रास्ते जो आज सुबह जो सातवां बैच आज भगवती नगर जम्मू से रवाना किया गया, तो उसमें 173 गाड़ियों का जो काफला है ये रामबन पहुंचने वाला है, रामबन से मतलब निकलने वाला है बनिहाल की तरफ, क्योंकि रामबन में इनको रुकने की इजाजत नहीं होती है। सुबह का नाश्ता वगैरह करने के लिए इन्हें बनिहाल में रोका जाता है। जो बनिहाल ये बालतल का ट्रैफिक है, 4,480 यात्री इसमें शामिल है, जबकि पहलगाम का जो काफला है जिसमें 188 गाड़ियां शामिल है, ये 5,357 यात्रियों पर मुश्तमिल। ये अभी चिनानी पहुंच रहा है और अभी कुछ वक्त में ये चिनानी टनल से होकर रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगा, जबकि जो बालतल वाला है वो बनिहाल पहुंचेगा और पहलगाम वाले काफले को जो उनका लंगर वगैरह का जो उनके खाने पीने का सुबह का इंतजाम होता है नाश्ते का, वो चंद्रकूट में ही किया जाता है। ओवरऑल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का इस वक्त रोका जाता है जब यात्रा निकाली जाती है। तो इस वक्त जो जम्मू से कश्मीर ट्रैफिक आने वाला है उसे 7 बजे से नगरोटा से रिलीज किया गया है कश्मीर की तरफ, 7 बजे से 12 बजे तक वहां से गाड़ियों को, मुसाफिर गाड़ियों को कश्मीर की तरफ आने की इजाजत होगी। इसी तरह जो यहाँ कश्मीर से जो यात्रा के जो दोनों काफले, जो बालतल से जो काफला वो भी बढ़ रहा है आगे की तरफ, वो भी कुछ वक्त के बाद बनिहाल पहुंचेगा और यहाँ से उन्हें जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा, जबकि जो पहलगाम का काफला है वो कुछ वक्त के बाद यानी उससे थोड़ा सा देर से ताखिर से छोड़ा जाता है, तो उसको भी उम्मीद है आइंदा 1-1.5 घंटे में वो भी बनिहाल पहुंचेगा। मौसम बहुत खुशगवार बना हुआ है और इससे जो मौसम की जो शिद्दत होती है गर्मी में, तो उससे थोड़ा पिछले लगातार हम 4-5 दिनों से देख रहे हैं कि मौसम बहुत खुशगवार सुबह के औकात में हम कहेंगे, खासकर इस रामबन के सेक्टर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उसका जो ये बारिशें रात में हल्की हल्की बारिशें होती है, तो उससे मौसम में बहुत खुशगवार हो जाता है और जिसमें यात्रा भी और आम लोग भी बहुत राहत महसूस करते हैं। जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद तस्कीन, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए।

श्रोताओं, ये थे मोहम्मद तस्कीन, राष्ट्रीय राजमार्ग से अपडेट्स दे रहे थे। जैसा कि ये भी बता रहे थे कि मौसम जो है आज खुशगवार ही रहेगा। महकमे मौसम यहाँ से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज वादी में भी मौसम खुशगवार ही रहेगा। ताहम ऊपरी क्षेत्र में जो है कभी भी वर्षा हो सकती है। ऊपरी क्षेत्र में कब वर्षा होगी इस बात का पता नहीं लगता है। आप सभी श्रोताओं से यही गुजारिश, ये क्या आप जो है अपने साथ गर्म मलबूसात, वाटर प्रूफ बैग्स का जो है आप इस्तेमाल करते रहे, और वाटरप्रूफ बैग्स के अलावा जो है आप जो है विंड चीटर्स, अम्ब्रेला और बाकी जो भी एहतियाती तदाबीर से आपको काम लेने को कहा गया है उनसे आप काम लें, और कोशिश करें कि ऊपरी क्षेत्र में जो है आप सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते रहे ताकि आपकी जो यात्रा है अच्छे से हो पाए। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बाटल के रास्ते पर आप हमें FM बाल्टल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं,

0: हमारे साथ हमारे संवाददाता इस तारिक जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। तारिक, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी जुबेर, सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा शुभ प्रभात। तो 57 दिनों तक जारी रहने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा आज अपने 6ठे दिन में प्रवेश कर गई। भगवान शिव के भगत पूर्ण श्रद्धा आस्था और उत्साह के साथ अपनी पवित्र धार्मिक यात्रा जारी रखे हुए हैं। हजन मामू सुहाने मौसम के बीच आज सुबह ठीक 4 बजे नुनवना राज शिवर से हजारों यात्रियों का जत्था चंद्रवारी की ओर रवाना हुआ। इसके अलावा निजी होटलों, हटों और दीगर हाउसों पर में ठहरे श्रद्धालु भी चंद्रवारी की ओर रवाना हो चुके हैं
0: जी।
1: तो चंद्रवारी में अवशेष जांच और यात्रा से जुड़े रस्मी कार्रवाई के बाद श्रद्धालु शिशनाग और पंचतरणी की ओर अपनी पद यात्रा का आगाज करेंगे। यात्रा की रवानगी का यह सिलसिला दोपहर 12 बजे तक जारी रहने की संभावना है। हिमालयी पहाड़ों मार्ग से गुजरकर बाद तीर्थ यात्री दोपहर तक शिशनाग और पंचतरणी पहुंच जाएंगे। वहीं शिशनाग और पंचतरणी में रात बसर करने वाले श्रद्धालु आज अपनी यात्रा जारी रखते हुए पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के शिवलिंगम के दर्शन का पुण्य लाभ हासिल करेंगे। इधर गुजश्ता रोज दर्शन के बाद वापस लौटने वाले यात्री नुनवर बेस कैंप से जम्मू के ओर रवाना कर दिए गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कल शाम तक 1,13,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन का पुण्य लाभ हासिल कर चुके हैं। इस बीच जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 9,837 यात्रियों का एक और जत्था काजीगुंड ट्रांजिट कब तकरीबन दोपहर 12 बजे के आसपास पहुंचने वाला है, जहां से बालतर और पहलगाम मार्ग के लिए अलग अलग काफिले रवाना किए जाते हैं। इनमें से पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए 188 छोटी बड़ी वाहनों में 5,357 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना होगा। इस जत्थे में 3,960 पुरुष, 1,143 महिला, 203 साधु, 33 साध्वी और 12 बालक शामिल है। ये यात्रा दोपहर तक पहलगाम पहुंच जाएगी और रात का विश्राम नुनवर बेस कैंप में करेंगे। यात्रा प्रशासन के ओर से नुनवर बेस कैंप शिशनाग और पंचतरणी में यात्रियों के आराम, भोजन और चिकित्सा सीमित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रखी गई है। कैंप में आवश्यकता के अनुसार लंगरों का भी एहतमाम किया गया, जहां स्वच्छ और हाइजेनिक भोजन की व्यवस्था की गई है। यात्रियों के आराम और क्याम के लिए भी मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग की सूचना के मुताबिक यात्रा मार्ग पर मौसम खुशगवार बना रहेगा। पहलगाम और आसपास के पहाड़ियों पर खुली धूप देखी जा रही है और आकाश भी साफ है। यात्रा ट्रैक में रात का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था, जबकि इस वक्त पहलगाम से पवित्र गुफा तक जो तापमान है 16 डिग्री के आसपास है और दिन के वक्त इसके 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की संभावना है। पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा तक बिजली, पानी और दीगर आवश्यक सुविधाएं की जो 24 घंटे व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा कैंपों में पूजा पाठ के लिए भोजन, पूजन सामग्री भी उपलब्ध रखी गई है। हेल्थ विभाग की बात करें तो गश्ती टीमें पूरी यात्रा मार्ग पर तैनात है, जगह जबकि यात्रा प्रशासन और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी आपसी समन्वय और टीम वर्क के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यात्रियों ने प्रशासन के ओर किए गए इंतजाम पर संतोष व्यक्त किया है। हम भी आशा करते हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करके लौटने वाले सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूरी हो और इनकी यात्रा सफल, मंगलमयी और समृद्धिया साबित हो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद तारिक, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओ, ये थे एस तारिक, पहलगाम से अपडेट्स दे रहे थे नुनवर बेस कैंप से। जैसा कि ये भी बता रहे थे कि यात्रियों के लिए जो है दोनों मार्गों पर जगह जगह पर जो है आपको सरकार की ओर से बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रखी गई है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, हेल्प डेस्क काउंटर्स हो, मेडिकल काउंटर्स हो, रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपके लिए बहुत सारी जगहों पर जो है काउंटर्स रखे गए हैं। ताहम प्रशासन द्वारा इसी बात पर जोर दिया गया है कि आप जहां से भी यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, आप कोशिश करें कि पहले ही जो है आप अपना ऑनलाइन पंजीकरण करें। बगैर ऑनलाइन पंजीकरण के आप यात्रा की ओर ना निकले, क्योंकि बीच रास्ते में जो है आपको यहाँ आकर जो है आपको फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब आप बगैर रजिस्ट्रेशन यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर आपको बहुत सारी भीड़ देखने को मिलेगी और वहाँ पर जो है आपको फिर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कोशिश करें कि

पहले ही ऑनलाइन पंजीकरण करें, उसके बाद अपना RFID कार्ड हासिल करें। RFID कार्ड हासिल करने के लिए आपके पास जो है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह, वो आप अपने साथ ज़रूर रखें ताकि आपको जो है रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आकाशवाणी शरणसंड की सूचना आप तक पहुँचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालटल के मार्ग पर आप हमें FM बालटल 103.7 MHz,

0: पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जो है खुशगवार मौसम में इस वक्त सभी तीर्थ यात्री दोनों मार्गों पर पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है। दोनों मार्गों पर जो है सभी तीर्थ यात्री बड़े खुश दिख रहे हैं, प्रसन्न दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा दिए गए जो है फैसिलिटीज़ उन्हें बहुत पसंद आ रही है। सरकार द्वारा उठाए गए इकदाम से सभी तीर्थ यात्री बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। दोनों मार्गों पर जो है इस वक्त खुशगवार मौसम में सभी तीर्थ यात्री शिव जी के दर्शन प्राप्त करने में जो है इस वक्त गुफा की ओर रवा दवा है। आज जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज सातवां जत्था जो है वादी की ओर रवाना किया गया, जिनमें कुल मिलाकर 9,837 श्रद्धालु शामिल है। श्रोतो, 8 बजने वाले हैं, आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनते हैं।
1: आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
4: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय

0: संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में एआई तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वही 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्री

मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता

0: के से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और इसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
2: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
3: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था।
5: अमर उजाला की सुर्खी है भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी।

0: India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes the first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलाक्वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वजीर आजम के दफ्तर ने एल नीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाबतगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमेरिका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। और फुटबॉल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और इंडोनेशिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और बैन अलाक्वामी कानून के मुताबिक इस खतरे से निपटने के लिए फैसलाकुन मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। जकार्ता में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर करार दिए गए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया, जिनमें वो दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं जिन्हें अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1267 बंदिशों की कमेटी ने नामजद किया हुआ है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इसके लिए साजगार पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और इससे निपटने में तआवुन को गहरा करने से इत्तेफाक किया है। तआवुन में दहशतगर्दी के लिए रुकूम मुहैया किए जाने और काले धन को जायज बनाने की रोकथाम को मुस्तहकम बनाने, दहशतगर्दाना सरगर्मियों को माली मदद पहुंचाने की रोकथाम, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों इस्तेमाल और लोगों को ऑनलाइन बुनियाद परस बनाए जाने से निपटने, नीज डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिए दहशतगर्दों की भर्ती रोकने के इकदाम शामिल हैं। दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने वाले रवैये का जिक्र करते हुए दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दों के माली नेटवर्क्स को रोकने और दो तरफा व कसीर मुल्की तआवुन में इजाफा करने का आज़्म किया, जिसमें अक़्वामे मुत्तहिदा और माली कार्रवाई की टास्क फोर्स FATF की सरगर्मियां भी शामिल हैं। दहशतगर्दी और बैन मुल्की मुनज्जम जराइम के दरमियान ताल्लुक का एतराफ करते हुए भारत और इंडोनेशिया ने अपने घरेलू कवानीन और बैन अलाक्वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक एक दूसरे को मालूमात फराहम करने और बेहतरीन तौर तरीकों से आगाह करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने दहशतगर्दी के तआवुन से निपटने के लिए एक मुफाहमत नामे को जल्द मुकम्मल किए जाने का भी खैर मकदम किया। उम्मीद है कि इस पर जल्द दस्तखत किए जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय वजीर आजम हैं जिन्होंने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। जकार्ता में इंडोनेशिया के कानून साज अरकान से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने ऐसे दोतरफा ताल्लुकात में एक नए दौर के लिए कहा, जो मुश्तरका तहजीबी विरासत, जमहूरी अकदार और मुस्तकबिल के मुश्तरका खाके पर मुश्तमिल हो। भारत को जमहूरियत की मां करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ जमहूरी राब्तों को मुस्तहकम बनाने का अहद किए हुए है।
3: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है।

0: की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसला कुन बैन अलाक़वामी कोशिशों की ज़रूरत उजागर की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज़्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एल नीनो के असरात का जायज़ा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाबतगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकाम पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाज़ों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ।
1: पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz। पहलगाम के प्राचीन मार्ग से आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रहीम रिजवान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स है आज के दिन के हवाले से, इनके पास आइए सुनते हैं रहीम रिजवान से। रिजवान, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: धन्यवाद आपका भी। श्रोताओं को हम सबसे पहले यहाँ के वातावरण जो मौसम है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो बालतल के पूरे क्षेत्र में आज का मौसम आमतौर पर ठंडा रहेगा। सुबह सवेरे से ही मौसम अबर आलूद होने से अच्छी संभावना बनी हुई है। धूप खिलने के साथ ही बीच बीच में हल्की वर्षा होने की संभावना है। ताहम इस बीच श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल मार्ग से सफलतापूर्वक बिना किसी बाधा के एवं शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। ये वाकया यात्रा की सुचारू तथा अच्छी व्यवस्थाओं को दर्शाता है। लिहाजा ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए आज सुबह सवेरे 13,010 श्रद्धालु बम बम बोले हर हर महादेव का पवित्र नाद करते हुए गुफा की तरफ रवाना हुए। लंबी लंबी कतारों में यात्रियों की एक बड़ी तादाद रात के 3 बजे से ही दुमेल कंट्रोल गेट पर देखने को मिले, जहां यात्रियों ने RFID कार्ड हासिल करके जोश और जज्बे के साथ अपनी तीर्थ यात्रा गुफा की ओर शुरू की। इन यात्रियों में 10,178 पुरुष, 2,303 महिलाएं, 256 बालक बालिका, 5 साधु, 30 साधियां, 9 ट्रांसजेंडर एवं 177 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। जहां हर रोज देश के विभिन्न भागों से बड़ी मात्रा में श्रद्धालु घाटी आगमन होकर बालतल मुख्य मार्ग से गुफा जाकर दर्शन करते हैं, वहीं यात्रा शांतिपूर्ण व्यवस्थित एवं शानदार ढंग से प्रगति पर है। तथा इस दौरान बीती रात 10 बजे तक 25,004 यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे। बालतल वापस पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में 18,240 पुरुष, 6,070 महिलाएं, 284 बालक बालिका, 106 साधु, 19 साधियां, 7 ट्रांसजेंडर एवं 278 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। पवित्र गुफा जाकर जहां श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ में शिरकत करके देश एवं घाटी की अमन शांति के लिए प्रार्थना की, वहीं श्रद्धालु जिला प्रशासन के द्वारा यात्रा रूट के हर पड़ाव पर किए गए व्यवस्थाओं को लेकर काफी संतुष्ट थे। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि इस बारिश प्रशासन ने बालतल मार्ग से बाबा बर्फानी की भक्तों की पवित्र यात्रा सफल बनाने के लिए जगह जगह उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। वहीं यात्रियों की हिफाजत के लिए सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं, ताकि तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इधर शाम 5 बजे के बाद ट्रांजिट कैंप मैनीगाम एवं ट्रांजिट कैंप शादीपुरा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को इन्हीं ट्रांजिट कैंपों में रुकना पड़ता है, जहां उनके लिए प्रशासन ने अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध रखी हैं। और इन यात्रियों को भी सुबह सवेरे बालतल बेस कैंप या जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ जाने की अनुमति दी जाती है। और इस तरह बालतल मार्ग से तीर्थ यात्रा बड़ी खुश असलूबी से जारी है। जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
1: धन्यवाद आपका।
0: श्रोताओं, ये थे रहीम रिजवान गांदरबल से अपडेट दे रहे थे। जैसा कि मौसम के

आर ये बता रहे थे, मौसम जो है अबर आलूद ही अभी बालतल के रूट से है और वक्फे वक्फे से वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। ताहम सभी तीर्थ यात्री जो है सरकार द्वारा उठाए गए इकदाम से बहुत खुश और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और मुसलसल प्रशासन की यही कोशिश है, केंद्र प्रशासन और राज्य प्रशासन की यही कोशिश है कि जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है सभी तीर्थ यात्रियों का ख्याल रखा जाए, उनकी सुविधा को जो है यकीनी बनाया जाए ताकि सभी तीर्थ यात्री जो है वो बआसानी जो है अपनी यात्रा मुकम्मल कर पाए। तो हम तीर्थ यात्रियों से भी यही निवेदन यही गुजारिश कि आप जो है एहतियाती तदाबीर से काम ले, जिन भी एडवाइजरीज़ को जो है आप तक पहुंची है उन एडवाइजरीज़ को आप फॉलो करते रहे, प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश निर्देशों का जो है पालन करते रहे ताकि आपकी जो पूरी यात्रा है वो आसानी से हो पाए। पूरी यात्रा के दौरान जो है आपको किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और कोशिश करें कि जहां भी आपको किसी मदद की ज़रूरत हो आप जो है नज़दीकी हेल्पलाइन डेस्क जो है वहाँ पर जाए, उनसे राबिता कायम करें, उनसे बात करें, उनसे मशवरा ले, तभी जो है आपकी जो मुश्किल है वो आसान हो जाएगी। और जहाँ पर दोनों मार्गों की अगर हम बात करें, दोनों मार्गों पर जो है आपको जगह जगह पर सरकार के अधिकारी जो है सरकारी अधिकारी जो है आपको मिलेंगे जो आपकी सहायता के लिए पेश पेश रहते हैं, उनसे आप कॉपरेट करें ताकि दोनों मार्गों पर जो है ये यात्रा बआसानी मुकम्मल हो पाए। और बार बार प्रशासन द्वारा ये निर्देश दिया जाता है कि आप जो है ऑनलाइन पंजीकरण करें, विदाउट रजिस्ट्रेशन किसी भी यात्री को जो है पवित्र गुफा की ओर नहीं जाने दिया जाएगा, यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। कोशिश करें कि आप जहां से भी आ रहे हैं पहले ही आप एडवांस में ही ये ऑनलाइन पंजीकरण करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप वादी की ओर आए, यात्रा करने के लिए आए। यात्रा के दौरान जो है जिन भी एडवाइजरीज़ को जो है आपके लिए पेश किया गया है उन एडवाइजरीज़ को आप फॉलो करते रहे, एडवाइजरीज़ को फॉलो करने के बाद जो है आपकी जो यात्रा है वो आसानी से गुजर जाएगी, आपको किसी भी किस्म की दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग, यह आवाज़ है आकाशवाणी की।

0: कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। बालटल के मार्ग पर आप हमें FM बालटल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, आपको बताते चले, ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज 2638 शिव भक्तों ने जो है बाबा भोलेनाथ के दर्शन

प्राप्त किए हैं, पवित्र गुफा से वापस आए हैं। इनमें से 1905 पुरुष, 655 महिलाएं, 25 बालक, 3 साधु, 50 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 2638 श्रद्धालु ने जो है, ताज़ा रिपोर्ट्स आने तक पवित्र गुफा

नाजी यात्रा 2026 का सातवां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया, जिनमें कुल मिलाकर 9,837 श्रद्धालु 361 छोटे बड़े वाहनों में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। इन श्रद्धालुओं में से 4,480 तीर्थ यात्री जो है बालटल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे, वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 5,357 श्रद्धालु को जो है पवित्र गुफा रवाना किया जाएगा। कुल मिलाकर 9,837 श्रद्धालु आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जो है घाटी की ओर भेजे गए, जिनमें 6,684 पुरुष, 2,730 महिलाएं, 21 बालक, 320 साधु, 80 साध्वी, 2 ट्रांसजेंडर शामिल है। आकाशवाणी ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि सभी तीर्थ यात्री की जो यात्रा है वो स्वास्थ्य प्रसन्न और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है, क्षण क्षण की सूचना आप तक तो पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बादल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz।

हर्ट्स डीटीएच की आराधना सर्विस आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के अलावा आप हमें आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, 9:25 हो चुके हैं, आइए समाचार सुनते हैं।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं इशफाक अमीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की मजबूत मईशत आलमी इक्तिसादी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। जकार्ता में इंडियन डायस्पोरा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के असूलों पर काम करते हुए तरक्की के सफर पर गामजन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ जी यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के तहफ़ और सहूलियात का खास ख्याल रखना इंतजामिया की अवलिन तरजीहात में शामिल है। वो कल शाम यात्रा का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत कर रहे थे। मनोज सिन्हा ने अफसरान को हिदायत दी कि यात्रा पर रवाना होने से पहले हर यात्री की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वो मकामी मेहमान नवाजी और जम्मू कश्मीर की रिवायती फनून और दस्तकारी की खूबियों का तजुर्बा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोक भवन में यात्रा से मुतल्लिक कायम कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों पहलगाम और बालतल से खुश असलूबे के साथ जारी है। यात्रा के पहले 5 दिनों के दौरान लगभग 1,13,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। यात्री इंतजामिया और मकामी लोगों की जानिब से किए गए इंतजाम पर काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं।
1: मेरा नाम मोनू कुमार शर्मा है, मैं दिल्ली गाजियाबाद से हूँ। मैं यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आया हूँ। बाबा का आशीर्वाद बना रहे तो हमारा देश भी सही रहे, सुरक्षित रहे। मुरादाबाद से आया हुआ हूँ, टूरिस्ट गाइड को पूरी बस को लेके आया हुआ हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे अपनी कम से कम 90 जने आए हुए हैं, हम 2 बस में।
2: इंदौर से आया हूँ, मेरा नाम है जगमोहन यादव। मैं 2000 से आ रहा हूँ, ये मेरी 25वीं यात्रा है। धीरे धीरे देखते देखते जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अच्छा करा है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं सबको थैंक यू देता हूँ।
0: इस दौरान आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 9837 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला वादी के लिए रवाना हुआ। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना तादाद तय की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुँच जाएँ। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुँचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतज़ार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। तलीमी निज़ाम के तहफ़ के लिए इंतजाम के अज़म का इदा करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तलीमी इदारों को इलम कौम की तमीर और आइनी अकदार का मरकज़ बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि काबिल एतराज़ लिटरेचर के जरिए तलबा को गुमराह करने या इंतहा पसंदी की तरफ रागिब करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आलम अब्दुल्ला के साथ अलग अलग मुलाकातें की। लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ हुई मुलाकात में फौजी अमूर, इलाकाई सलामती और अवामी फलाह व बहबूद के मुख्तलिफ मौजूद पर तबादले ख्याल किया गया। बाद अजां फौज के सरबराह ने वजीर आलम अब्दुल्ला से भी उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और खित्ते की सलामती सूरत हाल पर बातचीत की। उनके हमरा चिनार कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह और दीगर सीनियर फौजी अफसरान भी थे। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि हुकूमत आवामी अहमियत के हामिल मनसूबों की बरवक्त तकमील, बेहतर शहरी सहूलियात की फरहमी और लोगों के मियार हयात में तब्दीली लाने की वादाबंद है। वो कल राजौरी में नौशेरा के PWD डाक बंगला में 2,49,00,000 रुपये की लागत से तामीर किए गए कॉन्फ्रेंस हॉल का इफ्तिताह करने के मौके पर एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जदीद सहूलियात इलाके के इंतजामी ढांचे को मजबूत बनाएगी। इससे कबल नायब वज़ीर आला ने नौशेरा हल्के में सड़कों, पुलों और दीगर बुनियादी ढांचों के मनसूबों पर जारी काम का तफसीली जायजा लिया। दीही तरक्की महकमे के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने महकमे के अफसरों की एक मीटिंग तलब करके इस सेक्टर में मरकजी फ्लैगशिप स्कीमों की अमलावरी और महकमे की मजमू कारगुजारी का जायजा लिया। सेक्रेटरी मौसूब ने स्कीमों की अमलावरी के लिए दस्तियाब रुकूमात का मुनसिफाना इस्तेमाल करने और मुस्तहकीन तक फलाही स्कीमों के फवायद पहुँचाने की हिदायत दी। पासपोर्ट खिदमात की फरहमी के लिए बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की जानिब से 11 जुलाई शनिचरवार को एक खसूसी मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के तहत 11 जुलाई को पासपोर्ट सेवा केंद्र श्रीनगर, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र अनंतनाग और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट के सेवा केंद्र बारामूला में ये खिदमात इस मुहिम के तहत जारी रहेंगी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर BS रावत ने कहा।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बादल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पहलगाम, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआर के अलावा आप हमें आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप बेझिझक अपने विचार, अनुभव और प्रश्न जो है हमारी टीम के साथ साझा करें। हमारे समर्पित हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। नंबर एक बार फिर सुने, नंबर है 9596990954। आप हमें ईमेल आईडी के जरिए भी अपने विचार और प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aashvanibaltal@gmail.com, aakashvanibaltal@gmail.com। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने भी टोल फ्री नंबर्स रखे हैं। इन टोल फ्री नंबर से आप मजीद जो है मालूमात हासिल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800180719, 1800180719। ये टोल फ्री नंबर्स, इन पर भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। सभी तीर्थयात्रियों से यही गुजारिश कि आप जो है जगह जगह पर जहाँ पर भी आपको प्रशासन द्वारा उठाए गए इकदाम मिले, अधिकारी मिले, उनके साथ कॉपरेट करें और कोशिश करें कि उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाए, चाहे हेल्पलाइन डेस्क हो, मेडिकल सेंटर्स हो या खान पान के जो काउंटर्स बनाए गए हैं, रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स बनाए गए या और भी अन्य सुविधाएं जो आपके लिए रखी गई है उनका

0: फ़ायदा उठाए उनको आप इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो यात्रा है आसानी से हो पाए, या कोई भी मुश्किल अगर आपको दरपेश है, किसी भी प्रश्न का जवाब आपको चाहिए, तो आप टोल फ्री नंबर से हेल्पलाइन डेस्क पर जाकर जो है उनके बारे में उनसे जान सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम एक बार फिर दोहराते हैं, प्रशासन द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर कुछ इस तरह से हैं, 1800-1807-199, 1800-1807-198। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।
1: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोता, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान नायकू श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पांथा चौक से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। इमरान, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी बहुत शुक्रिया। चूंकि अमरनाथ जी यात्रा बड़े ही पुरअमन और बड़े ही पुरासन तरीके से जारी है और आज भी श्री अमरनाथ जी यात्रियों का जत्था जो है जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर वैली वारिद हुआ है। वहीं देखा जाए तो यहां श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ जी यात्रियों के दो अलग अलग जो जत्थे हैं वो अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए गए हैं और दोनों रूट्स की तरफ रवाना किए गए हैं सख्त तरीन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बीच में। वहीं कल शाम को भी यहाँ यात्री जो आए थे उन्होंने यहाँ रात को विश्राम किया, यहाँ रात को वो ठहरे और आज सुबह उन्हें यहाँ से जो है अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया है। और इनमें मर्द भी, खवातीन, कुछ बच्चे भी शामिल थे, साधुज और साध्वीज भी कुछ शामिल थी। और ओवरऑल पहले दिन से ही श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप से यहाँ अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए यात्रियों को रवाना किया जा रहा है और यात्री भी यहाँ मुसलसल पहुंच रहे हैं और शाम को और कोई दिन में या दोपहर में यहाँ पहुंच के जो है प्रॉपर जो यहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज है मुकम्मल करने के बाद उन्हें फिर रवाना किया जा रहा है। और इस सिलसिले में यहाँ श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ जी यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं जो है वो रखी गई है, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि खाने पीने की को लेके जितनी भी बुनियादी जरूरियात है या जो बेसिक फैसिलिटीज है वो अमरनाथ जी यात्रियों के लिए रखी गई है। सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात है ताकि यात्रियों को किसी किस्म की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने श्राइन श्री अमरनाथ जी यात्रा के अरेंजमेंट या इंतजाम का एक जायजा लिया, उन्होंने रिव्यू लिया और एक आला सती एक हाई लेवल उन्होंने एक मीटिंग भी की है, उसकी सदारत उन्होंने किया और जिसमें जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डलू और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, इसके अलावा श्राइन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के CEO और इसके अलावा जो दीगर जो आला अफसरान गवर्नमेंट के थे उन्होंने इस आला सती मीटिंग में शिरकत की। और एलजी साहब ने कहा कि अब तक 1,13,000 से जायद यात्री मुकद्दस गार में दर्शन कर चुके हैं और उन्होंने इस दौरान तमाम अफसरान को, सभी जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको हिदायत दी है, डायरेक्शंस दी है कि तमाम यात्रियों की सही रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए, उनकी दुरुस्त रजिस्ट्रेशन को यकीनी इंश्योर किया जाए और किसी भी सड़क में रास्ते में तैनात अफसरान हर मुमकिन जो है मदद फराहम करें। जहां जो भी ऑफिशियल्स तैनात किए गए हैं वो अपनी जो असिस्टेंस है, अपनी जो मदद है उसको जो है हर तरह तरीके से वो पेश रहे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हुकूमत कहा कि हुकूमत का मकसद है कि यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात, एक अच्छा माहौल और बगैर किसी परेशानी के वो दर्शन फराहम कराना है। और उन्होंने कहा कि यात्रियों की हिफाजत, सिक्योरिटी और आसान तरीके से दर्शन हमारी सबसे बड़ी तरजीह है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस आला सती मीटिंग में श्री अमरनाथ जी यात्रा कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा हिंदुस्तान की कदीम तहजीब, रूहानी विरसे और

से उस द्वार से जो है आप बाबा भोले के नाथ के जो है दर्शन प्राप्त करते हैं। वही एक हिस्से को जो है बालटल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किया जाता है। पहलगाम के प्राचीन मार्ग से जब आप जाते हैं तो पहलगाम के प्राचीन मार्ग से पहलगाम से होते हुए आप चंदनवाड़ी, पीसूटॉप, सूजीबल, नागाकोटी, शेषनाग, महागुण स्टॉप और पंचतरणी से होते हुए आप संगम पहुँच जाते हैं। संगम एक ऐसा स्थान जहाँ पर सभी तीर्थ यात्री एक साथ मिल जाते हैं जो बालटल से आ रहे होते हैं और पहलगाम से जो यात्रा पवित्र गुफा की ओर जा रहे होते हैं। बालदल की अगर बात करें तो बालदल के मार्ग से जो है आप नीलगढ़, बालतल, दो मेल और ब्रारीमुख से होते हुए संगम पहुंच जाते हैं। संगम के बाद जो है आप एक साथ मिलकर पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाते हैं। ये सफ़र जो है 3 किलोमीटर्स का सफ़र है। 3 किलोमीटर तक का ये सफ़र जो है ऊपरी क्षेत्र का सफ़र है, खड़ी चढ़ाई है। और इस खड़ी चढ़ाई के बीच जब आप चलते हैं तो आपको जो है बड़ा एहतियात से जो है आपको काम लेना होता है। जो भी सरकार द्वारा निर्देश दिए गए होते हैं उनका आप पालन करते रहे। खड़ी चढ़ाई में जब आप जाते हैं तो आप पहले ही नीचे कोशिश करें। अगर आपको जो है किसी किस्म की दुविधा का सामना है, आपको किसी मुश्किल का सामना है, तो आप नीचे डेजिग्नेटेड काउंटर्स पर जो है जाकर कोशिश करें कि वहाँ उनसे, वहाँ पर जो सरकारी अधिकारी है, सरकार प्रशासन द्वारा जो वहाँ पर अधिकारी रखे गए हैं, उनसे आप बात करें, उनसे मशवरा करें। बाद में ही जो है आप ऊपरी क्षेत्र की ओर जाए ताकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आकाशवाणी ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा है कि सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा जो है स्वास्थ्य प्रसन्न और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुँचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग। Thank you.

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, ताज़ा सूचना के अनुसार जो है कुल मिलाकर 4,867 तीर्थयात्रियों ने जो है आज पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 3,430 पुरुष, 1,300 महिलाएं, 55 बालक, 6 साधु, 75 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 4,867 श्रद्धालु ने जो है अभी तक शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। वहीं दुमेल के एक्सेस कंट्रोल गेट को जो है

14,400 श्रद्धालुओं ने पार किया है। यूँ जो है 14,400 तीर्थ यात्रियों को जो है बालटल के मार्ग से दुमेल एक्सेस कंट्रोल गेट की ओर जो है छोड़ा गया है। इन तीर्थ यात्रियों में 11,479 पुरुष, 2,353 महिलाएं, 269 बालक, 62 साधु, 33 साध्वी, 185 सुरक्षाकर्मी शामिल है। यूँ जो है ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बालटल के रास्ते से 14,400 तीर्थ यात्रियों को जो है दुमेल एक्सेस कंट्रोल गेट की ओर अलाउ किया गया है। आकाशवाणी संस्करण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहें। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

0: अरे भाई कहाँ जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहा हूँ।
0: मंदिर तो बंद है, मंदिर पूरे एक साल बाद खुलेगा।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओ, अमरनाथ जी यात्रा 2026 इस वक्त खुशगवार मौसम में दोनों मार्गों पर रवा दवा है। श्रोताओ, यात्रा के दौरान पवित्र गुफा तक के सफ़र में, इस पवित्र सफ़र में जो है, आपको जगह जगह पर प्रकृति की सुंदरता, शिव भक्तों के भीड़ के साथ चलते चलते आपका मन जो है वाकई प्रसन्न रहता है। आप में नई फूर्ति, नई ऊर्जा और तनाव से मुक्ति मिलती है। ये यात्रा न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करती है। तीर्थ यात्रा से जुड़े सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन, प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे, ताकि ये पूरी यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहे। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें, भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें 100.1 MHz DTH की आराधना सर्विस आकाशवाणी की मोबाइल ऐप एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रुतो श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 पुरम और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर मुतल्लिका इदारे जो है तीर्थ यात्रियों की सुविधा में लगे हुए हैं। ताज़ा सूचना के अनुसार जो है सुबह 9 बजे तक जो है बालतल के दुमेल गेट से 14,933 तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए मुकद्दस गुफा की ओर तीर्थ यात्रा को रवाना किया गया, जिनमें 11,962 पुरुष, 2,409 महिलाएं, 269 बालक, 67 साधु, 33 साधुया, 9 ट्रांसजेंडर जबकि 185 सुरक्षाकर्मी शामिल है। ताज़ा सूचना के अनुसार जो है कुल मिलाकर 7,388 तीर्थ यात्रियों ने अभी तक बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 5,140 मर्द, 2,015 महिलाएं, 90 बालक, 18 साधु, 1 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर जबकि 103 सुरक्षाकर्मी शामिल है। मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है दोनों रास्तों पर आज अमूमी तौर आसमान पर आलूद ही रहेगा, हल्की वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। वही जम्मू से बटोट और बटोट से अनंतनाग के सफर के दौरान जो है आपको वक्फे से तेज बारिश भी देखने को मिलेगी, गरज चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। वही पवित्र गुफा के दोनों मार्गों पर जो है हल्की वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। ताहम सभी तीर्थयात्रियों से प्रशासन द्वारा ये गुजारिश की गई है कि आप जो है मुकर्रर वक्तों का ख्याल रखें, जो कट ऑफ टाइमिंग्स आपके लिए दी गई है उनका आप पूरा ख्याल रखें, कट ऑफ टाइमिंग्स के मुताबिक ही आप जो है अपना सफ़र करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जो है आप टोल फ्री नंबर्स का इस्तेमाल करें। टोल फ्री नंबर्स पर जो है आप लेटेस्ट अपडेट्स ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम एक बार फिर आपके लिए दोहराते हैं, टोल फ्री नंबर कुछ इस तरह से है 1800-1807-199, 1800-1807।

1-9-8। इन टॉल फ्री नंबर्स पर जो है आप किसी भी किस्म की ताज़ा अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और उनका आप पूरा ख्याल रखें, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए जो है आप आगे का सफ़र तय करें। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का आप पालन करते रहे, ताकि दोनों मार्गों पर जो है आपको यात्रा के दौरान आपको किसी भी किस्म की दुविधा का सामना ना करना पड़े। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

एफएम पहल गम 14.1 MHz, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के अलावा आप में आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 खुशगवार मौसम में जो है रवा दवा है। आपको बता दे, आज प्रातः भगवती नगर बेस कैंप से जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का सातवां जत्था घाटी की ओर भेजा गया। कुल मिलाकर 361 छोटे बड़े वाहनों में ये कॉन्वॉय जो है चल रही है। कुछ ही वक्त बाद जो है ये कॉन्वॉय लंबर ग्राउंड काजीगुंड पहुंच जाती है। 361 छोटे बड़े वाहनों में कुल मिलाकर 9837 तीर्थ यात्री घाटी की ओर रवा दवा है। इन तीर्थ यात्रियों में से 4480 श्रद्धालु बालतल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 5357 तीर्थ यात्रियों को दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। इस संख्या में 6684 पुरुष, 2730 महिलाएं, 21 बालक, 320 साधु, 80 साध्वी और 2 ट्रांसजेंडर शामिल है। ये कॉन्वॉय कुछ ही वक्त बाद लांबर ग्राउंड काजीगुंड पहुंच जाती है। आपको बताते चले, लांबर ग्राउंड काजीगुंड में जो है इस जत्थे का विभाजन होता है। एक हिस्से को श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पांथा चौक पहुंचाया जाता है, वहीं दूसरे हिस्से को नुनवन बेस कैंप पहलगाम लिया जाता है। पहलगाम के प्राचीन मार्ग से आप चंदनवाड़ी से होते हुए पिसू टॉप, जोजीबल, नागाकोटी, शेषनाग, महागुन स्टॉप, पंचतरनी और उसके बाद संगम पहुंच जाते हैं। संगम एक ऐसा स्थान जहां पर दोनों रास्तों से आए हुए यात्री एक साथ मिल जाते हैं। बालतल के मार्ग से दुमेल ब्रारी मार्ग से होते हुए आप संगम पहुंच जाते हैं। संगम से पवित्र गुफा तक का सफ़र 3 किलोमीटर्स का है। इस रास्ते पर जो है आप सभी तीर्थ यात्री एक साथ चलते हैं। सभी तीर्थ यात्रियों की ये यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि यहाँ आस्था, समर्पण, साहस और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन मार्गों से होते हुए शिवजी के दर्शन प्राप्त करने आते हैं। इस वर्ष की यात्रा भी विशेष उत्साह से जारी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधाओं के लिए जो है व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय नागरिक मिलकर जो है आपकी सेवा में लगे हुए हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है आपको जगह जगह पर स्थानीय नागरिक, प्रशासन के नागरिक हर जगह मिलेंगे, जो आपकी सहायता के लिए लगे हुए हैं। आप सभी तीर्थ यात्रियों से यही गुजारिश, आप जो है सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे, ताकि आपको पूरी यात्रा के दौरान किसी भी किस्म की दुविधा का सामना ना करना पड़े। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 रवा दवा है। मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है, दोनों मार्गों पर आज वक्फे से हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है, पर सभी तीर्थ यात्रियों का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियां, बहती नदियां और शिव भक्तों का अद्भुत वातावरण तीर्थ यात्रियों को एक अलग ही आध्यात्मिक संसार में आपको ले जाता है। श्रोताओं, ये यात्रा केवल धार्मिक शिक्षा से ही नहीं देती है, बल्कि प्राकृति के संरक्षण का संदेश भी देती है। हिमालय की ये पवित्र भूमि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इसलिए प्रत्येक यात्री का ये कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, स्वच्छता बनाए रखें, प्लास्टिक तथा अन्य प्रदूषणकारी वास्तु का कतई उपयोग ना करें, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। यात्रा का मन बनाने से पहले अपने अपनी जगह से ही ऑनलाइन पंजीकरण करें। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही यात्रा के लिए निकले। पूरी यात्रा के दौरान सरकारी अधिकारियों से कॉपरेट करते रहे, किसी भी किस्म की दुविधा का सामना हो, कोई प्रश्न हो, आप बेझिझक हेल्पलाइन डेस्क काउंटर्स कर जाए, वहाँ पर जो है आपको इन चीज़ों का पता मिलेगा। जो भी किस्म की दिक्कत आपको दरपेश हो, आप हेल्पलाइन डेस्क पर जाए, वहाँ जो अधिकारी होंगे वह आपकी सहायता में बराबर रहेंगे। सरकार द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर्स पर भी आप अपने प्रश्न और सवालात पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की दुविधा आप से आप जूझ रहे हो तो आप इन नंबरात पर राबता कायम करें। टोल फ्री नंबर है 1800-1807-199, 1800-1807-198। टोल फ्री नंबर एक बार फिर सुने, 1800-1807-199, 1800-1807-198। ट्रांसमिशन के तहत कोई विचार, कोई अनुभव आप साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे समर्पित एक हेल्पलाइन मात्र नंबर के साथ राबता कायम करें। हमारा एक मात्र हेल्पलाइन नंबर है 9596-990954। नंबर एक बार फिर सुने, 9596-990954। आकाशवाणी क्षण आपके साथ है, क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर कॉल करिए

0: पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप एवं आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 पूरी उत्साह के साथ जारी है। आपको बताते चले, ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 7368 श्रद्धालुओं ने जो है पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें कुल मिलाकर 5140 पुरुष, 2015 महिलाएं, 90 बालक, 18 साधु, 1 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर और 103 सुरक्षाकर्मी शामिल है। श्रोताओं, मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है दोनों मार्गों पर आज मौसम अबरालू ही रहेगा। हल्की वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। गरज चमक के साथ जो है हल्की वर्षा भी हो सकती है। तहम आप सभी श्रोताओं से यही निवेदन कि आप जो है सरकार द्वारा निर्देश दिए गए निर्देशों का आप पालन करते रहे, अपना RFID कार्ड पहनाए रखे। ऊपरी क्षेत्र में जो है कब वर्षा होगी इसका पता नहीं लगता है। आप कोशिश करें कि पहले ही आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहे, अपने साथ गर्म मलबूसात रखें, उन्हीं कपड़े रखें, वाटरप्रूफ बैग्स रखें, अम्ब्रेला, विंड चीटर और लेसेस वाले शूज़ में ही आप कोशिश करें यात्रा के लिए निकले, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको खड़ी चढ़ाई चढ़नी है, वहाँ जो है अगर वर्षा होगी तो आपको स्लीपर्स में दिक्कत आ सकती है। कोशिश करें कि लेसेस वाले शूज़ का ही इस्तेमाल करें, वाटरप्रूफ बैग्स अपने साथ रखें और अपने साथ एक पन्नी रखें जिसमें अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिख कर रखें, ताकि आप जो है इस पूरी यात्रा के दौरान दोनों मार्गों पर पवित्र गुफा की ओर जब आप जाते हैं तो एक समूह में यात्रा करें। कोई भी शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सरकार द्वारा रेस्ट्रिक्टेड एरियाज मुकर्रर किए गए हैं उनकी ओर ना जाए। कोशिश करें कि एक समूह में यात्रा करें और जो आपको प्रशासन के अधिकारी मिलेंगे उनके साथ आप कॉपरेट करते रहे, ताकि दोनों मात्रों पर जो है मार्गों पर जो है आपकी जो ये यात्रा है सुखद तरीके से हो पाए। आपकी ये पूरी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। श्रोता, हम आपको हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। आप बेझिझक अपने अनुभव, विचार और प्रश्न जो है हमारी टीम के साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9596990954 पर अपने विचार, अनुभव और प्रश्न भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर हम दोहराते हैं, हमारा एक मात्र हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। अगर आप किसी भी किस्म की मुश्किल में हैं, अगर आपको जो है किसी भी किस्म के सवालात आपके मन में हैं या कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी, आपके लिए जो है प्रशासन द्वारा टोल फ्री नंबर्स भी रखे गए हैं। टोल फ्री नंबर्स पर आप राबता कायम कर सकते हैं, वहाँ जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। टोल फ्री नंबर है 1800-1807-199। एक और टोल फ्री नंबर है 1800-1807-198। इन फ़ोन नंबर्स पर जो है आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आकाशवाणी मुसलसल लगातार इस कोशिश में है कि आपकी जो यात्रा है इसमें हम बराबर के शरीक रहे, आप तक पूरे अपडेट्स पहुंचाते रहे, आपके लिए जो है जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचाते रहे, यही हमारी कोशिश है। क्षण क्षण की सूचना हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना।

यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहें। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR एवं आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 12 बजने वाले हैं, आइए अब समाचार सुनते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण

0: और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार पूरी योजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex where Prime Minister Modi offered prayers at the main Shiva temple. They also viewed the temple's intricate carvings before witnessing the ongoing conservation efforts being supported through India-Indonesia cooperation. Addressing a gathering at the Prambanan temple in Yogyakarta in Indonesia, the Prime Minister said he was born in Vadnagar, home to Hathkeshwar Mahadev, and that the Somnath Jyotirling in Gujarat, the first among the 12 Jyotirlingas, holds special significance, with him having direct responsibility for its development.
1: यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल-पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है.
2: India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorists and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1,267 Sanctions Committee. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit where he will participate in the third India-Australia Annual Summit with the Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. He will also address a large gathering of the Indian diaspora who constitute a strong pillar of the India-Australia relationship. The bilateral discussions between Prime Minister Modi and his Australian counterpart, the Honourable Anthony Albanese, are set to advance cooperation across several key domains. In Jammu and Kashmir, police today said that one terrorist has been killed in an encounter with security forces in Chanapura area of Shopian. Police said that the operation was conducted jointly with Army and the CRPF. Talking to Akashwani News, Inspector General of Police V.K. Birde said a body has been found with arms and ammunition at the spot and the identity is being ascertained. Union Home Minister Amit Shah today spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis regarding the heavy rainfall and flood-like situation in the state. During the conversation, Mr. Shah assured the Chief Minister of all possible assistance from the central government to support the Maharashtra government in dealing with the situation. The Prime Minister's Office PMO held a high-level review meeting to review the possible impact of El Nino on various sectors and the preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to Prime Minister Dr. P.K. Mishra at the Seva Theatre yesterday. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Dr. Mishra directed that the overall situation should be continuously monitored and the impact of monsoon or delayed monsoon on vulnerable districts must be assessed in coordination with states. The US has carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. According to U.S. Central Command, the strikes targeted Iranian air defense systems, command and control centers, coastal radar sites, anti-ship missile systems, and more than 60 Islamic Revolutionary Guard Corps fast boats in and around the Strait of Hormuz. Iran's Central Military Command warned that it would respond decisively to what it called an act of aggression and terrorism. In football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. And that is the end of this news bulletin.
3: श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा. इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए. इसके लिए रोज के 4-5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहें. ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
0: यात्रा

0: जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक पवित्र गुफा में 10,116 तीर्थयात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 7,000 पुरुष, 2,800 महिलाएं, 110 बालक, 38 साधु, 2 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर और 125 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 10,116 तीर्थयात्रियों ने आज अभी तक पवित्र गुफा में शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरे उत्साह के साथ, श्रद्धामत के साथ जारी है। तीर्थयात्री जगह जगह पर प्रशासन द्वारा उठाए गए इकदाम से बेहद खुश और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आकाशवाणी भी मुसलसल इस कोशिश में है कि सभी तीर्थयात्रियों को भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है जगह जगह पर हम जगह जगह के अपडेट्स जो है हम आप तक पहुंचाते रहे, ताकि आपको पूरी यात्रा के दौरान सभी अपडेट्स पहुंचे और किसी भी किस्म की दुविधा का अगर आपको सामना है तो आप जो है नज़दीकी हेल्पलाइन डेस्क पर जाकर जो है उनसे रब्ता करें। वहाँ पर जो है आपको सरकारी अधिकारी मिलेंगे, उनसे आप अपनी जो मुश्किल है वो साझा करें, ताकि आपकी जो पूरी यात्रा है वो सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचना आप तक पहुंचाते रहेगा, बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। आपको बता दें कि अभी जो है 12 बजे तक की रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें कि कुल मिलाकर 12,997 तीर्थयात्रियों ने बाबा के दर पर हाजिरी दी है, जिनमें पुरुषों की संख्या 8,826, महिलाएं 3,838, बालक 135, साधु 50, साध्वी 2, ट्रांसजेंडर 1 और सुरक्षा कर्मचारी 145। और यूं संख्या जो है हमारी बन जाती है आज 12 बजे तक की 12,997।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। जी हाँ, आज प्रातः जो तीर्थ यात्रियों को जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से घाटी की ओर रवाना कर दिया गया, कुल संख्या रही है 9837 की और जिनमें 4480 तीर्थ यात्रियों को बालतल मार्ग से रवाना कर दिया गया और पहलगाम के मार्ग से 5357 तीर्थ यात्रियों को पहलगाम के मार्ग से रवाना कर दिया गया और कुल संख्या बनती है 9837 और 361 छोटे बड़े वाहनों में इनको रवाना कर दिया गया।
1: जी बिल्कुल शाहिन जी, हम यहाँ पे अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि बालतल के मार्ग की अगर बात करें तो वहाँ से कुल मिलाकर, जैसे कि आपने भी कहा, 4480 तीर्थयात्रियों को रवाना कर दिया गया और इनमें से पुरुषों की संख्या 2724, महिलाएं 1587, बालक 9, साधु 117, साध्वी 43।
0: जी अगर हम पहलगाम की बात करते हैं तो पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 3960 पुरुषों को रवाना कर दिया गया और जो है महिलाएं 1143, बालक 12, साधु 203, साध्वीज 37 और ट्रांसजेंडर की बात करें 2। तो कुल मिलाकर जो है संख्या बनती है पहलगाम रूट से 5357। इस तरह कुल हम अगर बात करें, एक बार फिर कहना चाहेंगे कि 9837 तीर्थ यात्रियों को घाटी की ओर रवाना कर दिया गया 361 छोटे बड़े वाहनों में। ऐसे अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे संग रहिए और सुनते रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ।

श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH एवं न्यूज ऑन AIR आराधना चैनल के माध्यम से, और इसके अलावा हम OTT वेव्स के OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि अब से बस जरा सी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में खबरें सुनेंगे।

दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे हैं। ब्रिक्स खवातीन की दो रोजा वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है ताकि खवातीन को बाख्तियार बनाने और पायदार तरक्की के बारे में ताउन को मुस्तहकम बनाया जा सके। ईरान ने अमेरिका के सिलसिलेवार हवाई हमले के बाद बहरीन और कुवैत में अमेरिका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल की आलमी कीमतों में 2% से ज्यादा का इजाफा हो गया। और फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया है। अब क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के हमराह आज योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानन मंदिर का दौरा किया। वजीर आजम का क्लासिकी योग्यकार्ता रक्स के साथ रिवायती अंदाज में खैरमकदम किया गया, जिसमें इंडोनेशिया के गुनागुन सकाफती विरसे की झलक पेश की गई। दोनों रहनुमाओं ने 9वीं सदी के मंदिर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां वजीर आजम मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भारत इंडोनेशिया इश्तराक के जरिए तहफुज की जारी कोशिशों का जायजा लेने से पहले मंदिर की नक्काशी का भी जायजा लिया। एक मुश्तरका बयान में सदर प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि परम्बानन भारत और

0: एशिया के दरमियान सदियों पुराने तहजीबी रिश्तों की एक अलामत है। उन्होंने मंदिर कम्प्लेक्स के तहफ़ुज और बहाली के लिए मदद पर भारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सकाफत दोनों मुल्कों को जोड़ने के लिए एक पुल के तौर पर काम कर रही है। योग्यकर्ता में परम्बानंद मंदिर में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने अपने दौरे को रूहानियत से भरपूर और यादगार करार दिया। उन्होंने तकरीबन 1200 साल तक इस शानदार विरासत का तहफ़ुज करने पर इंडोनेशिया के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मंदिर के तहफ़ुज में भारत की शराकत दारी से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत का इजहार होता है।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वो मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात पर भगवान शिव के साथ जुड़ने के मुतअद्दिद मौके मिलने को अपनी अच्छी किस्मत समझते हैं। इंडोनेशिया में योग्यकर्ता के मकाम पर परम्बानंद मंदिर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो हटकेश्वर महादेव के वतन वाडनगर में पैदा हुए थे और ये कि 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला गुजरात में सोमनाथ लिंग की उनके लिए खास अहमियत का हामिल है क्योंकि वो इसकी तामीर व तरक्की से बराह रास्त जुड़े हुए हैं।
1: यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने आला तालीम के शोबे में ताउन को उसत देने की गरज से एक अहम कदम उठाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट AIIM बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला समुद्र पार कैंपस कायम करेगा। ये कैंपस मशरकी जावा में सिंगोसारी खसूसी इक्तसादी जोन में कायम किया जाएगा। इस कैंपस से पूरे आसियान खित्ते के तलबा और पेशावर अफराद के मुस्तफीद होने का इम्कान है। IIM बेंगलुरु के डायरेक्टर इंचार्ज यू दिनेश कुमार ने कहा कि इस पहल कदमी से तालीम के शोबे में इश्तराक और ताउन को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर आज मेलबर्न पहुंचने वाले हैं, जहां वो ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बानीज के साथ तीसरी सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शरीक होंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे जो भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात का एक मजबूत सुतून है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत नई दिल्ली में आसियान भारत की एशिया की तिजारत से मुतालिक ज्वाइंट कमेटी AITIGA की 13वीं मीटिंग की मेजबानी कर रहा है ताकि आसियान भारत तिजारती समझौते का मजीद जायजा लिया जा सके। ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग और इससे मुतालिका मीटिंगें इस माह की 6 तारीख से 10 तारीख तक मुनक्किद की जाएंगी, जिनमें कुछ अरकान वहां मौजूद हैं जबकि बाज़ अरकान वर्चुअल तरीके से मीटिंगों में शिरकत कर रहे हैं। कॉमर्स और सनअत की वजारत ने कहा है कि ज्वाइंट कमेटी की बदौलत ज़ेली कमेटियों को उनके काम से मुतल्लिक शोबों के बारे में कलीदी नवीयत की रहनुमाई फराहम हुई है। ब्रिक्स मुल्कों के खवातीन की वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी और सेक्रेटरी अनिल मलिक और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने खास इजलास में शिरकत की। ये इजलास कोची के ग्रैंड हयात होटल में दिन के 10:30 बजे शुरू हुआ। इससे पहले खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत सावित्री ठाकुर और सेक्रेटरी अनिल मलिक ने मुकम्मल इजलास में शिरकत की। खास इजलास के दौरान मुश्तरका बयान को मंजूरी दी जाएगी। इजलास के मकाम के नज़दीक देही तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तग़ज़िया और तालीम जैसे मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की क़यादत वाली तरक्की में भारत की हुसूलियाबियों को उजागर करने के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया है। ईरान ने अपने सूबे होर्मुज़गान और बंदरगाही शहर महाशहर पर अमरीकी हमलों के बाद अमरीका की फौजी तनसीबात पर जवाबी हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया और फिजाइया ने

अमेरिका के 85 फौजी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से मुश्तरका कार्रवाई की। इस दौरान बहरीन की वजारत दाखिला ने अपने मुल्क के बाशिंदों से कहा है कि सायरन बजने के बाद पनाहगाहों में चले जाएं। इससे पहले अमेरिका ने आबनए हुरमुज से गुजरने वाले तिजारती जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए थे। उधर खाम तेल की आलमी कीमतों में आज 2% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान ताज़ा कशीदगी की वजह से जंगबंदी को खतरा लाहक हो गया है। इस जंगबंदी की वजह से तवानाई की आलमी मंडियों को थोड़ी राहत मिली थी। वजारत खारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने वेनेजुएला में 24 जून को आए दोहरे शदीद जलजले के बाद ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वहां भारत की

0: air defense systems had shot down a U.S. MQ-9 drone over Bushehr province. Earlier, the U.S. carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. Global crude oil prices rose more than 2% today as renewed hostilities between the United States and Iran threatened to shatter the fragile ceasefire that had brought some relief to global energy markets. Brent crude was trading nearly 2.3% up at $75.87 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% up at $71.96 per barrel when reports last came in. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% down in the afternoon session today amid renewed geopolitical tensions in the West Asia. The Sensex plunged 590 points to 77,591, while the Nifty shed 185 points to 24,213 when reports last came in. And in football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, says India's participation in temple's conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in 3rd India-Australia Annual Summit. Two-day BRICS Women Ministerial Meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगणन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांगणन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांगणन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री

0: श्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामबनन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देश के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे यह भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा

0: के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जंगल डमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमरीका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
4: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण जो है उसमें हम शामिल हैं और आप सबका फिर एक बार स्वागत करते हैं। हम आपके साथी उद्घोषक सायका सलीम और
5: मैं शाहिना ऋषि,
4: और इस ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ जुड़े हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH एवं न्यूज ऑन AIR आराधना चैनल के मीडियम से भी जो है आप हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके अलावा हम वेव्स के OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। हमारे संग और क्षण-क्षण की अपडेट्स के आप तक पहुंचाने का हमारा पूरा पूरा प्रयास रहता है और इसी सिलसिले में हम हमारे संवाददाताओं से जुड़ते हैं और आप तक ताज़ा तरीन जानकारी जो है पहुंचाते हैं। और इसी सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भगवती नगर जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब। आइए जानते हैं इन से यात्रा से जुड़ी ताज़ा जानकारी।

0: जी जावेद
1: जी, दोपहर के अपडेट्स के साथ मैं जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से जावेद मेहराब। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा का समागम जम्मू के पहले आधार शिविर भगवती नगर और तवी रिवर फ्रंट पर बराबर जारी है। यहां श्रद्धालुओं की भारी संख्या पवित्र श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए रवाना होने को बेताब नजर आ रही है। हालांकि 2-3 दिनों की तेज धूप और उमस से जहां स्थानीय लोगों का हाल बेहाल है, वहीं श्रद्धालुओं को भी सख्त उमस और तेज गर्मी की वजह से तकलीफ का सामना है। हालांकि मंगलवार रात 11 बजे जम्मू में मौसलाधार बारिश शुरू हुई, इससे तापमान में गिरावट के साथ साथ उमस से भी राहत मिली। लेकिन इस दौरान तवी रिवर फ्रंट और भगवती नगर आधार शिविर में भी तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली। इस दौरान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी दोपहर तक आज सफाई अभियान में जुड़े रहे ताकि तीर्थयात्रियों के लिए आसानी पैदा हो। बात लखनपुर, विजयपुर और सांबा के ट्रांजिट कैंप्स की करें तो यहां कैंप से 60 घंटे के इंतजार के बाद जम्मू पहुंचे तीर्थयात्री बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वहीं दर्शन कर वापस लौट रहे तीर्थयात्री सारी कठिनाइयों को भूलकर सिर्फ बाबा भोलेनाथ के रंग में रंग चुके हैं। तीर्थयात्री बेहतर सुविधाओं, मेहमान नवाजी और तीर्थयात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंधों से खुश हैं। वहीं सख्त पहाड़ी की श्रृंखला का ये सफर थका देने के बावजूद बाबा बर्फानी के दर्शन करने से तीर्थयात्रियों के चेहरों पर रौनक और चमक साफ नजर आ रही है। बात तीर्थयात्रियों की करें तो अपनी बारी का इंतजार करते तीर्थयात्री यहाँ जम्मू के मजीन इलाके में तिरुपति बालाजी के मंदिर में भगवान के दर्शन करने को भी निकले हैं। एडीसी अनुसिया जम्वाल इस मौके पर श्रद्धालुओं के साथ मंदिर पहुंची। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनुसिया जम्वाल के मुताबिक श्री अमरनाथ जी के तीर्थयात्रियों को जम्मू की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत से रूबरू कराया जा रहा है। राही योजना के तहत ये बस सर्विस शुरू की गई है। इस विशेष बस सर्विस के जरिए हेरिटेज के माध्यम से श्रद्धालुओं को जम्मू के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक स्थलों का भ्रमण किया जाता है। वहीं तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन से भी भगवती नगर आधार शिविर तक मुफ्त बस सर्विस शुरू की गई है, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए लगातार आसानी पैदा करने में प्रशासन काम कर रही है। अब तीर्थयात्रियों को ट्रेन से जम्मू पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को भगवती नगर आधार शिविर तक पहुंचने के लिए दूसरे वाहन ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। तीर्थयात्रा को बेहतर बनाने के लिए हर रोज़ प्रशासन विशेष तरीके से उचार और उद्कार करके अधिकारी समीक्षा करते हैं ताकि तीर्थयात्रा को श्रद्धालुओं के लिए और आसान बनाया जा सके।
0: जी जावेद, आपका इस विवरण के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये थे जावेद मेहराब, हमारे संवाददाता जम्मू भगवती नगर से। श्रोताओं, आपको बता दें कि जो इन्होंने पूरी जानकारी हमें दी और उससे हमें ये पता चला कि कुल मिलाकर स्थिति जो है सामान्य है और सभी रास्तों पर यात्रा जो है बिना किसी रुकावट के चल रही है, कि बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चल रही है। और यहाँ पर एक और बात जो है आपसे कहना चाहेंगे, ज़िला प्रशासन ने और तो और हम भी रेडियो के माध्यम से आपसे हम ये कहेंगे कि निवेदन कर रहे हैं सभी तीर्थयात्रियों से कि वे यात्रा के लिए तय समय का प्लान करें। पवित्र गुफा की ओर जाने के लिए जो है बालताल एग्जिट पॉइंट से निकलने का समय 9 बजे तय किया गया है और इस समय के बाद किसी भी तीर्थयात्री को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इन बातों को का ख्याल जो है, ध्यान जो है, जरूर रखें।
2: विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालताल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, आपको बता दें यहाँ पर हम सुबह से लेकर शाम तक आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं और वहाँ हमारे रिपोर्टर्स जो है आपके लिए यही कार्य में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं इसी कार्य में ताकि आपको अपडेट कराएं। और अपडेट के साथ हमारी फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इमरान नायकू, जो श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप पांथा चौक से हैं। जी इमरान
3: जी, बिल्कुल, सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा

0: जारी है, बड़े ही पुरअमन तरीके से जारी है, खुश असलूबी के साथ जारी है। और यहाँ श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप का जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ से भी अमरनाथ जी यात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए जा रहे हैं। और आज भी यहाँ से अमरनाथ जी यात्रियों के अलग अलग जत्थे जो है वो अमरनाथ जी गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए गए हैं, जिसमें मर्द, खवातीन और इसमें कुछ साधु भी शामिल थे। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यात्रा को लेके बड़ा ही उत्साह है, न सिर्फ पूरी कश्मीर वैली में बल्कि शहर श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं। और पहले दिन से ही हम देख रहे हैं कि जो यात्री आ रहे हैं इत्मीनान और खुशी का इजहार कर रहे हैं, और खासकर यहाँ जो अरेंजमेंट्स है, और मुसलसल हम उनसे यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ किस तरीके की जो अरेंजमेंट्स है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो उस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। और जैसे कि कल आज सुबह भी हमने एक अपडेट किया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने यहाँ एक मीटिंग भी कल शाम को की थी, और उसमें उन्होंने यात्रा को लेके सारी जो अरेंजमेंट्स है उसका जायजा लिया, सिक्योरिटी का जायजा लिया। और जो यहाँ लोक भवन में 24/7 जो कंट्रोल रूम श्राइन बोर्ड की तरफ से कायम किया गया है, वहाँ उन्होंने विजिट किया, उनसे वहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले, और ओवरऑल यात्रा को लेके उन्होंने सारे ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दिए हैं। जहाँ जहाँ पे अमला तैनात है वो यात्रियों कि हर तरह की मदद, उनकी असिस्टेंस करें। और यात्रियों से भी कहा गया है कि वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जो है फॉलो करें, गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करें। और साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तमाम यात्रियों से ये अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर की जो यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है, कश्मीर आर्ट है, यहाँ के जो मसनूआत है, वो उसको प्रमोट करें, ताकि ये मईशत का या इकोनॉमी का एक जरिया भी या हिस्सा भी बन सके, और वो भी कंट्रीब्यूट करें। और साथ साथ यहाँ जो इस वक्त सबसे बड़ा ये कंसर्न रेज किया जा रहा था कि इस वक्त एनवायरनमेंट का मसला है, बाकी चीजें हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यात्रा को लेके जो सैनिटेशन का निजाम गवर्नमेंट ने हर साल की तरह इस साल भी रखा है, और जो वेस्ट मैनेजमेंट, जो डिस्पोजल का सिस्टम है, वो चाहे शहर श्रीनगर हो या बाकी जगहों पर, वो काफी काबिल तारीफ है। और उस पर यहाँ के लोकल्स या यात्रीज भी कॉपरेट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से जो उस पर इकदाम उठाए गए हैं वो काफी उसको लेके अप्रिशिएट किया जा रहा है। बाकी जितने भी जो बेसिक फैसिलिटीज है यात्रियों के लिए, वो हर जगह पर बाहम रखी गई है, और खासकर श्रीनगर शहर।
1: इमरान, मैं आपको यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगी कि जहाँ पर प्रशासन बिजी है हमारी या हमारे यात्रीज के जो भी उनके लिए इंतजामात हैं, वहाँ हमारे अगर लोकल लोगों की बात करें, आम लोगों की बात करें, वो भी व्यस्त हैं इसी कार्य में, वो भी यात्रीज की मदद के लिए हर जगह, हर इलाके में बहुत ही स्टैंड रहे हैं। और आज भी यही सुनने को मिलता है कि प्रशासन के साथ साथ जो लोकल लोग हैं वो भी बहुत मदद कर रहे हैं इस कार्य में यात्रियों
0: बिल्कुल,
1: को।
0: देखिए ये यहाँ ये यात्रा यहाँ के तहजीब की एक रिवायत रही है, हमारे कल्चर की, हमारे कम्युनल हार्मनी की एक अच्छी रिवायत रही है कि यहाँ जब यात्री मुल्क के मुख्तलिफ जगहों से, हिस्सों से यात्रा के लिए आते हैं, तो यहाँ किस तरीके से जो लोकल कम्युनिटी है वो इसका हिस्सा बन जाते हैं। और आपने लास्ट ईयर भी और इस साल भी इन्हीं 5-6 दिनों में कुछ वीडियोज भी देखे होंगे जो वायरल हुए, जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे यहाँ के लोकल्स, कोई यात्री बीमार हुआ या उसको कोई मदद चाहिए तो वो कंधों पे उसको ले जाते हुए दिखाया गया, देखा गया। और इवन कि इस पर हम खुद बार बार यात्रियों के साथ बात करते हो, दो इम्पोर्टेंट सवाल हम हर एक यात्री से पूछते हैं। एक ये कि आप बताएं प्रशासन के जो यहाँ पे इंतजाम है, जो अरेंजमेंट्स है, उस पे आप अपनी बात बताएं। दूसरा ये कि जो लोकल
1: लोकल
0: लोगों का व्यवहार है, लोकल लोगों का तौर तरीका, बिहेवियर है, हॉस्पिटलिटी है आपके साथ, या जो किसी शॉप पर आप जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो उस पे जो उनका रिएक्शन आता है वो काफी काबिले तारीफ है, और वही असल कश्मीरियत है, और वही असल यहाँ के तहजीब, यहाँ के तमद्दुन, यहाँ के इस कल्चर की पहचान है। और
1: बिल्कुल
0: इसी से यहाँ की जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो रिवायत रही है, वो जो आपस में है भाई भाई, वो यात्रा से बेहतर मुझे लगता है कोई और त्योहार नहीं है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बगैर मजहब व मिल्लत लोग आ रहे हैं, यात्रियों की खिदमत कर रहे हैं, और जहां पे भी उनको जिस तरीके की भी असिस्टेंस, जिस तरीके की भी उनको मदद चाहिए वो कर रहे हैं। तो प्रशासन अपने तरीके से कर रही है, लेकिन
1: और
0: जहाँ
1: लोकल
0: लोकल लोगों को
1: जी
0: कंट्रीब्यूशन करना चाहिए वो साथ साथ है और शाना बशाना खड़े हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे माध्यम से हम अपनी तरफ से भी प्रशासन का और लोकल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस कार्य में जुटने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में, जिसमें क्षण क्षण की जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। अभी आपको बता दें कि बालताल में जॉइंट पुलिस कंट्रोल रूम से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार सुबह 9:30 तक यात्रा के सभी मार्ग जो हैं, जिनमें बालताल, दुमेल, रेलपथरी, ब्रारी मार्ग, संगम, काली माता, पोषपथरी, पंचतरनी, निचली पवित्र गुफा और पवित्र गुफा शामिल हैं, पूरी तरह खुले हुए हैं। और बालताल, पंचतरनी और पवित्र गुफा में मौसम जो है अभी साफ है, जबकि दुमेल, रेलपथरी, ब्रारी मार्ग, संगम, काली माता, पोषपथरी और निचली पवित्र गुफा में मौसम आकांक्षिक रूप से वहां पे बादल वाला बताया गया है। कुल मिलाकर स्थिति सामान्य है और यात्रा जो है बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल रही है।
1: जी हाँ श्रोताओ, आपको ये भी बता दें, मौसम विभाग की ताज़ा पेशनगोई के अनुसार कल से अगले दो दिनों तक आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की सी तेज वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा और तेज गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा और आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से निवेदन किया है कि निर्धारित हिदायतों का पालन करें, मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर रखें, सरकारी सलाहों पर अमल करें और किसी भी संकट के समय जो है प्रशासन और सुरक्षा विभागों के साथ पूरा सहयोग करें। जेहान साहब का यहाँ पे हमारे जो है हमारी यही कोशिश रहती है, यही प्रयास रहता है कि हम पल पल के अपडेट्स जो है अपने श्रोताओं के साथ साझा करें। तो कोशिश करते हैं एस तारिक जो है हमारे संवाददाता पहलगाम से उनसे जुड़ने की और उनसे अपडेट लेते हैं क्या कुछ हो रहा है केव के बाहर या जहां वो पहलगाम एरिया में है, वहां के अपडेट्स जानते हैं और श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। जी तारिक।
2: ये प्राचीन यात्रा मार्ग पर सुहाने मौसम के बीच आज दिन भर श्री अमरनाथ जी की आध्यात्मिक यात्रा श्रद्धा आस्था और उत्साह के साथ जारी है। आज सुबह 4 बजे पहलगाम के निजी होटलों और नुनवन आधार शेवर से वाहनों के जरिए रवाना होने वाले श्रद्धालुओं ने 16 किलोमीटर दूर चंदनवारी से अपनी बाजाबता पद यात्रा का आगाज किया था। श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में रही। चंदनवारी में RFID कार्ड और दीगर आवश्यक दस्तावेज की जांच के बाद यात्रियों को यात्रा मार्ग की अगली पड़ाव की जानिब रवाना कर दिया गया। दोपहर तक श्रद्धालु यात्रा मार्ग के अगले पड़ाव शिशनाग और पंचतरनी पहुंच गए, जहां रात्रि गुजारने के बाद तीर्थ यात्री कल सुबह पवित्र गुफा के ओर रवाना होंगे और भगवान भोलेनाथ के भगत वहां दर्शन का पुण्य लाभ हासिल करेंगे। इसके साथ शिशनाग और पंचतरनी में सुबह रवाना होने वाले हजारों शिव भक्तों ने आज बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा में शिवलिंगम का दर्शन किया। कमों से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा के साथ साथ जगह जगह मंदिरों के जरिए यात्रियों के लिए भोजन और जलपान का विशेष इंतजाम किया गया है। यात्रा विशेषता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी गई और हर पड़ाव पर राहिता केंद्र और हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। अजमे मामूल काजी कुंड ट्रांजिट कैब से पहलगाम के प्राचीन यात्रा मार्ग के लिए 188 छोटी बड़ी वाहनों में मुश्तमिल छठा जत्था करी सुरक्षा के बीच नरवन बेस कैंप पहुंच गया था। इस जत्थे में 5,357 यात्री शामिल थे, जिनमें 3,960 पुरुष, 1,143 महिला, 203 साधु, 33 साधवियां, 12 बालक और 2 ट्रांसजेंडर श्रद्धालु शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कल शाम तक 1,13,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन का पुण्य लाभ हासिल कर चुके हैं, जबकि आज ये रिपोर्ट फाइल करने तक यानी 2 बजे तक जो दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या तकरीबन 1,31,764 तक पहुंच चुकी है और दर्शन का सिलसिला लगातार

0: मौसम की बात करें तो मौसम के बारे में आपको सूचित कर दूं कि मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक यात्रा मार्ग पर मौसम साफ और साजगार बना हुआ है। इस वक्त पूरे यात्रा मार्ग पर खुशगवार मौसम पाया जा रहा है और तापमान तकरीबन 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। यात्री इस समय मुख्तलिफ टेम्पो और टेंटों में भजन प्रार्थना और दीगर धार्मिक अनुष्ठानों में मसरूफ है। हर कैंप और यात्रा मार्ग पर बाबा बर्फानी के प्रसाद और पूजा अर्चना की सामग्री भी उपलब्ध रखी गई है। हरत विभाग की बात करें तो उनकी गश्ती टीम में पूरी यात्रा मार्ग पर तैनात है। सुरक्षा बलों के जवानों के साथ साथ क्लस्टर मैनेजमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज, सैनिटेशन विभाग, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जल शक्ति विभाग, यात्रा प्रशासन और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी मुस्तैदी और लगन के साथ निभा रहे हैं। यात्रा नोडल अफसर हर रोज यात्रा से जुड़ी सभी विभागों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठकों के जरिए यात्रा की तैयारी और इंतजाम का विस्तार से जायजा ले रहे हैं। यात्रियों ने प्रशासन के द्वारा किए गए अंतिम इंतजाम पर संतोष व्यक्त किया है, जबकि स्थानीय लोगों ने भी अमन सद्भाव और भाईचारे की जो प्रेमवा है की बरकरार रखी है। शिव भक्तों के दिल खोल कर मेहमान नवाजी की के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा का छठा दिन इस आशा के और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है कि बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद आने वाले और लौटने वाले सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूरी हो और उनकी यात्रा सफल मंगल और मई साबित हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद तारिक आपका,
0: शुक्रिया।
1: तो श्रोताओं आपको बता दें कि अभी तक जितने भी हमने रिपोर्ट्स लिए हैं, यात्री बहुत ही प्रसन्न है प्रशासन से और स्थानीय लोगों से।
2: जी साईं जी, यहाँ पे जो है अपने श्रोताओं के साथ एक और रिपोर्ट साझा करना चाहेंगे, वो ये कि आज 2 बजे तक 18,764 तीर्थयात्रियों ने बाबा के दर पर जो है हाजिरी दी है, माथा टेका है, जिनमें कुल मिलाकर हम कहेंगे पुरुषों की संख्या की बात करें तो 12,082 पुरुष थे इस संख्या में शामिल, और महिलाएं 5,890, बालक 285, साधु 94, साध्वीज 5, ट्रांसजेंडर 4 और सुरक्षा कर्मचारी 204, और यूं ये पूरी संख्या जो है 18,764 बनती है।

जी श्रोताओं, आपको बता दें कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दोनों मार्गों से शांतिपूर्ण तरह से जो है कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा रवा दवा है और हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हुए क्षण क्षण के सूचना देने के लिए आपके साथ बने हुए हैं इस श्री अमरनाथ यात्रा के विशेष प्रसारण में।

0: श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहें। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
1: श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे साथ, और क्षण क्षण के अपडेट्स जो हैं आप तक पहुंचाने होते हैं, और यही हमारा प्रयास होता है कि आप तक जो है यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी जो है पहुंच जाए। और इसी सिलसिले में इस वक्त फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता रहीम रिजवान गांदरबल से। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ ताज़ा स्थिति है इस वक्त गांदरबल से। जी रिजवान साहब।
2: जी मैम, अगर बालतल की बात हम करेंगे तो बालतल मुख्य मार्ग से सुहाने मौसम के बीच तीर्थ यात्रा शानदार ढंग से जारी है। खुशगुवार वातावरण के बीच 14,338 श्रद्धालुओं को आज 10 बजे तक बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी गई। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक एक्सेस दुमेल कंट्रोल गेट पार करने वाले इन यात्रियों में 11,967 पुरुष, 2,409 महिलाएं, 259 बालक बालिका, 66 साधु, 33 साधियां, 9 ट्रांसजेंडर एवं 185 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। ऊंचे पर्वतों के बीच यात्रा रूट के मुख्तलिफ तथा कठिन पड़ाव पर पार करने के बालतल मार्ग से गुफा जाने वाले श्रद्धालु संगम टाप के मकाम पर नूनवन बेस कैंप से आने वाले श्रद्धालु से मिलकर पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो रहे हैं, जहां दोनों पूजा अर्चना में शिरकत करके अपना पवित्र सफर वापस

0: अंतर की तरफ शुरू करते हैं। श्रोता, वो नुनवन पहलगाम की तरफ गुफा जाने वाले बेशतर यात्री बालतल मार्ग से वापस आकर बालतल बेस कैंप में रुकते हैं तथा यहाँ रात्रि विश्राम के बाद अगले रोज कड़ी सुरक्षा के बीच अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो रहे हैं। इस बीच 5,420 यात्री आज शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित बालतल बेस कैंप वापस पहुंचे। पवित्र गुफा पर माथा टेक कर वापस बालतल पहुंचने वाले इन श्रद्धालु में 4,620 पुरुष, 630 महिलाएं, 75 बालक बालिका, 21 साधु, 2 साधिया एवं 72 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। आपको ये भी बताते चलें कि शिवलिंगम का दर्शन करके यात्रियों का बालतल बेस कैंप पहुंचने का ये सिलसिला देर रात गए तक जारी रहेगा और यात्रियों को बहिफाजत गुफा तक पहुंचाने और दर्शन करके सुरक्षित वापस लाने के लिए जिला प्रशासन गांधरबल ने जहां हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, वहीं सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि पवित्र यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जी
1: जी रिजवान साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं, चूंकि हमारे यात्री जो हैं बहुत ही, हम कहेंगे कि अधिक हो गए हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, तो क्या फिर भी जो है यहाँ की सुविधाओं को लेकर वो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं?
0: बिल्कुल, यात्रियों से हमने बात की तो उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि वो इस साल जिला प्रशासन खासकर गांधरबल की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने यात्रियों के लिए यात्रा रूट के हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। हालांकि हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि जिला प्रशासन गांधरबल के जिला अफसर या सूबाई इंतजामिया के अफसर जो है, और आज बालताल में इस वक्त डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर और एसएसपी गांधरबल सुधांशु दामा खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और बहुत सारे जिला अफसर जो है वो बालताल में ही मौजूद हैं और उनको इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस भारी मात्रा में इतने श्रद्धालु देश के विभिन्न भागों से यहाँ पहुंचेंगे। और वो भी बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन यहाँ पहुंचे हैं और उन्हें किस तरह किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा जिले प्रशासन के अफसरों को, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरे माहौल को टैकल किया और जो अनरजिस्टर्ड यात्री बालतल बेस के पहुंचे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी करवाई तत्काल, और साथ ही जो रजिस्टर्ड यात्री जिन्होंने पंजीकरण किया है और वो यहाँ पे पहुंचे हैं उनको भी गुफा की तरफ जाने की अनुमति दी गई अपनी बारी पे। इससे और एक मसला यहाँ पे हुआ है कि बहुत सारे ऐसे यात्री भी हैं जिनकी अभी बारी नहीं थी, जिन जो अपने मुकर्रर डेट पे यहाँ नहीं पहुंचे बल्कि डेट से पहले ही पहुंचे हैं, तो उनको भी हैंडल करना, उनको भी पवित्र गुफा दर्शन करने के लिए भेजना एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिले प्रशासन गांधरबल के लिए। तो और एक बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि जो भी यात्री नुनवन बेस कैंप यानी पहलगाम रूट से पवित्र गुफा जाते हैं उनमें करीबन 95% यात्री जो है वो बालतल की तरफ से वापस आते हैं, उनके लिए भी इंतजाम रखना। और ऑलरेडी जो इतने श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं भारी मात्रा में, तो अगर आंकड़ों की बात हम करेंगे तो शुमार नहीं किया जाता है कि कितने यात्री पहुंचे हैं।

0: प्रशासन का
1: जी
0: अधिपत्य
1: जी
0: अगर हम बात
1: जी
0: करेंगे और यहाँ के अफसरान की बात करेंगे जिनका बाजाबता तो निगरानी डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी का
1: बिल्कुल
0: दर्पण कर
1: बिल्कुल
0: रहे हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उन्होंने उच्च स्तर की सुविधाएं यहाँ की यात्रियों के लिए उपलब्ध रखी हैं। और इसके साथ साथ हमारे ट्रांजिट कैंप जो है, तो हम ये भी बताते चले अपने श्रोताओं को कि 5 बजे के बाद जो भी यात्री चाहे बालताल बेस कैंप से या जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से ट्रांजिट कैंप मनीगांव पहुंचते हैं, उनको 5 बजे के बाद आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो उनके लिए भी रात भर ट्रांजिट कम मनीगांव और ट्रांजिट कम शादी पोरा में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध रखी गई हैं। और कट ऑफ टाइम जो इन्होंने 5 बजे रखा, अब
1: जी
0: यात्री इतनी तादाद में आए हैं कि आप वो 3 बजे ही कभी कभार वो कट ऑफ टाइम रखते हैं ताकि इससे ज्यादा यात्री जो है वो बालतल की तरफ ना जाए तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा जो यहाँ ट्रांजिट कम मनीगांव है, जिसके आज ऑफिसर नोडल ऑफिसर यहाँ पे है, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर शेख सलाउद्दीन, उसकी निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है, तो अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से यात्रियों के लिए तमाम तर सहूलियात जो है वो हम पहुंचाई जा रही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यात्रा जो है वो अच्छे तरीके से और खुश असलूबी से बालतल मार्ग से जारी है।
1: ये हमारे लिए भी बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इवन ये जो है हम कह सकते हैं बढ़ोतरी हो रही है, भारी मात्रा में हमारे श्रद्धालु जो हैं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको उच्च स्तर की सुविधाएं जो है मिल रही हैं। जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से इसी प्रयास में है कि किसी भी यात्री को जो है कोई तकलीफ ना पहुँचे, कोई वो रुके ना, वो बस आगे बढ़ते जाएँ और अपनी इस पवित्र यात्रा को सम्पूर्ण करें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विवरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका
1: जी। श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता रहीम रिजवान गांदरबल बालताल से, जिन्होंने हमें बताया कि क्या कुछ सुविधाएं जो है इस वक्त वहां पर भी रखी गई है। इवन हम ये भी उन्होंने कहा कि भारी मात्रा में जो है हमारे श्रद्धालु जो है आ रहे हैं बाबा भोले के दर्शन करने के लिए, और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन श्रद्धालुओं से ये निवेदन ज़रूर करेंगे कि वो आएं ज़रूर, लेकिन एक हम ये कहेंगे कि अब पंजीकरण के बाद ही जो है पहले पंजीकरण करें और फिर अपनी बारी का जो है इंतज़ार करें और फिर जाके जो है बाबा भोले के दर्शन करें। बने रहिए शनशन के अपडेट्स के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे साथ, और हम इस प्रसारण को जो है और लाइवली बनाने के लिए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाताओं से, जिनसे हम इस यात्रा से जुड़ी ताज़ा जानकारी जो है आप तक पहुंचाने के का प्रयास करते हैं। और इस वक्त फ़ोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद तस्कीन बानिहाल के आधार शिविर से। तो आइए जानते हैं क्या कुछ ताज़ा जानकारी है यात्रा से जुड़ी इनके पास, और ख़ास तौर से हम ये इनसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर क्या कुछ जानकारी है इनके पास। जी तस्कीन साहब।
1: जी, राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल ट्रैफिक के लिए बहाल है, ट्रैफिक चल रहा है। और श्री अमरनाथ यात्रा के जो आज काफले जम्मू से कश्मीर की तरफ रवाना हुए, बहुत बड़ा काफला था, 10,000 के करीब 9,800 से ज्यादा जो यात्री आज की यात्रा में शामिल थे। तो वो दोनों अपने अपने मंजू की तरफ करीबन 12:30 बजे जो लास्ट जो काफला यहाँ से रवाना हुआ कश्मीर घाटी की तरफ, यानी टनल उन्होंने क्रॉस किया काजीगुंड बानहाल टनल। तो उसके बाद जो दोनों तरफ से जो यहाँ से ट्रैफिक गुजरने के बाद जो कश्मीर से जो बालतल और पहलगाम के रास्ते से जो श्री अमरनाथ यात्री दर्शन के बाद वापस आ रहे थे, तो उनकी भी गाड़ियां जो है रामबन डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर चुकी है और इस वक्त वो जम्मू के मतलब उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से गुजर कर जम्मू की तरफ बढ़ रही है। मजमूई तौर पर जो आज का जो रहा, आज थोड़ा ताखिर हुआ, ये शायद काफला बहुत ज्यादा था, तो उस वजह से जो बानहाल से कश्मीर की तरफ जाने में इनको जो आमतौर 11:30 तक होता था ओवर, तो लेकिन आज करीबन 12:30 बजे जो ट्रैफिक को कश्मीर की तरफ छोड़ दिया गया। इस दौरान जो ट्रैफिक जो सिविल ट्रैफिक है उस पर जो रिस्ट्रिक्शन है, सुबह 7 बजे से जो जम्मू से नगरोटा से मुसाफिर गाड़ियों को कश्मीर की तरफ छोड़ दिया गया, उसमें

0: टूरिस्ट गाड़ियां भी होती हैं या जो अनरजिस्टर्ड यात्री होते हैं वो भी उसमें शामिल थे, तो वो ट्रैफिक भी इस वक्त चल रहा है। और 11:30 बजे बाद जो ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक कश्मीर के ट्रैफिक को, मुसाफिर ट्रैफिक को जम्मू की तरफ छोड़ा जाता है, तो वो भी अभी चल रहा है। वो ट्रैफिक दोनों तरफ का अपने अपने मजदूर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो 3 बज चुके हैं और अब के बाद जो 3 बजे बाद जो भी पैसेंजर, जो भी यात्रा गाड़ी होगी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड या जो भी जो टूरिस्ट होंगे कश्मीर के सयाहत पर जाने वाले लोग होंगे, तो उन्हें अब यहाँ बनिहाल से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। अब सुबह 6:30 बजे के बाद ही सिक्योरिटी बंदोबस्त में उनको कश्मीर की तरफ भेजा जाएगा। जबकि इस वक्त जो चंद्रकूट का हमारा स्टेशन है जहाँ पर यात्रियों के लिए लंगर वगैरह लगे, तो वहां पर 2 बजे से ट्रैफिक रोका गया है। जो कश्मीर जाने वाला जो मुसाफिर, ये जो टूरिस्ट हैं और जो यात्री हैं, उन्हें रोक दिया गया है, क्योंकि 2 बजे बाद गाठी की तरफ उनको चलने की इजाजत नहीं दी जाती। करीबन 150 गाड़ी अब तक वहां पर जमा हुआ है और लोग हालांकि इंतजामिया को हर वक्त इसरार करते थे, तू मैं होती रहती कि हमें छोड़ा जाए, लेकिन जो सिक्योरिटी के जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी कवर बनाया गया है यात्रियों के लिए, तो उसके तहत उनको वो मजबूर किया जाता है कि 3 बजे के बाद बनिहाल से और 2 बजे के बाद रामबन से कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं होती है, तो उनको रोका जाता है। जिसे बनिहाल में जो यात्रियों के लिए लांबर ग्राउंड में लंगर से वहां पर ठहराया जाता है, वहां पर 400-500 लोग आराम से ठहराए जा सकते हैं, जबकि रामबन में जो यात्रा निवास है वहां पर करीबन 5,000 लोगों को एक वक्त ठहराने की गुंजाइश मौजूद है। इस दौरान आज एक गाड़ी भी जो जम्मू से कश्मीर की तरफ यात्रा का हिस्सा थी, उसमें कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया, प्रॉब्लम आ गई उसमें। बाद में जो इंतजामिया ने जो टाइम, मतलब 7-7 गाड़ियां रखी हुई है स्टैंड बाई पर, तो उनको गाड़ी, मतलब जो दूसरी बस में डाला गया जो यात्री कश्मीर की तरफ जा रहे थे, तो बाद में उन्हें भी कश्मीर की तरफ दूसरी गाड़ी में रवाना किया गया। मजबूरी तौर पर मौसम जो आज सुबह से बादल थे, रात को बारिशें भी हुई, सुबह तक हल्की हल्की बारिशें थी, तो अभी हल्के हल्के बादल है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, जिसकी वजह से जो मौसम है बहुत, मतलब खुशगवार मौसम है इस वक्त अगर रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो।
1: जी, हम ये कहेंगे कि अगर भारी मात्रा में यात्री भी आ रहे हैं, लेकिन हमारी सुविधाएं जो हैं वो ऐसी रखी गई हैं, व्यवस्थाएं जो हैं पूरी तरह से की गई हैं इन यात्रियों के लिए
0: 100%, क्योंकि ऐसे जो फकीरुल मिसाल इंतजाम किए गए हैं, चाहे सिक्योरिटी सेटअप हो, चाहे फिर जो यात्रियों के लिए जो, क्योंकि अगर देखेंगे जम्मू और यहाँ बनिहाल जो लास्ट जो पड़ाव पड़ता है बनिहाल का लांबर ग्राउंड, तो दो ही जगह पर यात्रियों को रोका जाता है, एक तो भगवती नगर में, उसके बाद जो रास्ते में सिर्फ चंद्रकूट और बनिहाल में, एक जो यात्रा जो बालतल वाली होती है उसे बनिहाल में रोका जाता है, जो पहलगाम के रास्ते से जाने वाले होते हैं उन्हें रामबन में रोका जाए, ये पहली बार किया गया है। अगर माजी में हम देखेंगे दोनों जगह पर इन गाड़ियों को रोका जाता था, वापसी पर भी और जाते समय भी, लेकिन इस दफा जो ये अच्छा इंतजाम किया, इससे थोड़ा सा एक प्रेशर जो है वो कम पड़ता है और यात्रियों को भी ज्यादा वो हड़बड़ी का शिकार नहीं होते, एक जगह वो अलग ग्रुप रुकता है, दूसरी जगह अलग ग्रुप रुकता है, तो ओवरऑल जो इंतजाम है बहुत आला है, चाहे वो सिक्योरिटी के हो, खाने पीने के लंगर हो, उसके बाद जो सेहत के मुतलिक जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, दवाइयां है, मुफ्त फ्री दवाइयां रखी गई है, फौज है, CRPF है, CISF है, सब ने अपने अपने तरफ से इंतजामिया के साथ जो टाउन के साथ पूरा चल रहा है, पूरे इश्तराक के साथ एक जो कोऑर्डिनेशन होती है, एक जॉइंट कंट्रोल रूम है, हर चीज की बारीक बिनी से निगरानी हो रही है, डिप्टी कमिश्नर खुद निगरानी करे, SSP करे, DIG जो हमारे रामबन रेंज के है, पूरी तरह से इस पर ओवरऑल जो है इंतजाम आला है। और पिछले साल के मुकाबले में जो भी यात्रियों से बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हर साल के साथ साथ जो इंतजाम में बेहतरी आती है, जो कमी पीछे रही है उनको ओवरकम किया गया है और जो मतलब यात्रा के लिए जो इंतजाम है वो मजीद बेहतर है इस साल अगर पिछले सालों के मुकाबले में बात की जाए तो। जी,
1: आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विवरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता बनिहाल से मोहम्मद तस्कीन, जिन्होंने ये बताया कि कुल मिलाकर अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति सामान्य है और सभी मार्गों पर जो है, दोनों मार्गों पर यात्रा बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चल रही है।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में आप हमारे साथ बने हुए हैं और हम आपको बता दें कि यात्री जो है भारी मात्रा में आ रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ आ रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और यहाँ पर प्रशासन और यात्रा से जुड़ा हम ये कहेंगे कि हर व्यक्ति इसी प्रयास में है कि यात्रा में कहीं पर भी कोई बाधा ना आए और ये यात्रा जो है, पवित्र यात्रा जो है, सुचारू रूप से चलती रहे। ये भी कहेंगे कि प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाओं को लेकर यहाँ कर लंगरों की जो सुविधाएं दी गई हैं, चिकित्सा की सुविधाएं दी गई हैं, जो भी सुविधाएं दी गई हैं, इन सुविधाओं को लेकर, इन व्यवस्थाओं को लेकर हर यात्री जो है प्रसन्न देखा जा रहा है। और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर भी हम ये कहेंगे कि यात्री बहुत ही संतुष्ट देखे जा रहे हैं।

श्रोताओं, आपको बता दें कि 3 बजे तक कुल मिलाकर 20,785 तीर्थयात्रियों ने आज सुबह से बाबा भोले के दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुष जो है उनकी संख्या 13,315 रही और महिलाएं 6,780, बालक 315, साधु 119, साध्वी 7, ट्रांसजेंडर 10 और सुरक्षा कर्मचारी जो है 239, और यूं ये पूरी संख्या जो है 20,785 हो रही है, जो आज इन श्रद्धालुओं ने आज 3 बजे तक बाबा भोले के दर पर

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के माध्यम से। और आपको बता दें कि जम्मू से बटोट तक आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम दर्जे की जो है वर्षा गरज के साथ और बिछौरें भी हो सकते हैं और तो और कहीं कहीं तेज़ वर्षा भी हो सकती है। अब अगर बात करें बटोट से लेकर अनंतनाग तक तो आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम वर्षा गरज के साथ पड़ सकती है और बिछोरे भी हो सकते हैं। और यहाँ पर हम एक और बात आपको कहें कि कहीं कहीं तेज़ वर्षा भी जो है हो सकती है। अनंतनाग से पहलगाम की बात करें तो आंशिक रूप से या आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं और यहाँ पर कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकना भी जो है हो सकता है। अब पहलगाम से पवित्र गुफा तक की बात करें तो आंशिक रूप से या आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं और यहाँ पर भी कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा जो है होगी और बिजली का चमकना भी जो है हो सकता है।

श्रोताओं, अब आपको बता दें कि पहलगाम से पवित्र गुफा यानी शेषनाग तक के बारे में आपको बता दें कि आंशिक रूप से बारी या आमतौर पर बादल जो है छाए रहेंगे और हल्की वर्षा और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं और यहाँ पर भी कहीं कहीं गरज के साथ बिजली का चमकना हो सकता है। और अब अगर पहलगाम से पवित्र गुफा और महागुना टॉप की बात करें तो यहाँ पर भी आंशिक रूप से या आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं और कहीं कहीं गरज के साथ

बिजली भी चमक सकती है। अब आते हैं पहलगाम से, हम ये बात करें कि पवित्र गुफा और पोषपत्री तक भी जो है आंशिक रूप या आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, और यहाँ पर भी कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमक सकती है। और अब बात करते हैं पहलगाम से पवित्र गुफा और से पंचतरणी तक, तो यहाँ पर भी आंशिक रूप से या आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, और कहीं कहीं यहाँ पर भी जो है बिजली चमक सकती है। और अब करते हैं पहलगाम से पवित्र गुफा और फिर यानी संगम की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आंशिक रूप से या आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं, और कहीं कहीं गरज के साथ जो है बारिश हो सकती है और बिजली का चमकना भी हो सकता है। और अब करते हैं पहलगाम से पवित्र गुफा तक की बात, तो यहाँ पर भी आंशिक रूप से या आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं, और कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है और बिजली का चमकना भी हो सकता है।

जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग, और हम बात कर रहे हैं अब बालतल मार्ग की। बालतल मार्ग की बात करें तो अनंतनाग से श्रीनगर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम आपको बता दें कि आंशिक रूप से या आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं हम ये कहेंगे कि गरज के साथ बिजली भी चमक सकती है। और श्रीनगर से बालतल के लिए भी यही जो है यही स्थिति रहेगी, और आंशिक रूप से या आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं और कहीं कहीं गरज के साथ बिजली का चमकना भी हो सकता है। और अगर बालतल से पवित्र गुफा तक की बात करें, यानी दुमेल तक की बात करें, वहां पर भी ऐसा ही जो है मौसम रहेगा, यानी कि आंशिक रूप से या आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं और कहीं कहीं हम ये कहेंगे कि बिजली भी चमक सकती है। और अब बालतल से पवित्र गुफा यानी ब्रारी मार्ग तक की बात करें तो यहाँ पर भी आंशिक रूप से या आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं और कहीं कहीं बिजली का चमकना भी हो सकता है।

जहाँ श्रोताओं, आप समाप्त कर रहे हैं मौसम विभाग से मिले जानकारी। बालतल से पवित्र गुफा यानी संगम क्षेत्र में आंशिक रूप से आमतौर पर मौसम जो है बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। इसी तरह अगर हम बालतल से पवित्र गुफा की बात करें तो वहाँ भी आंशिक रूप से आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते थे। और ये थी, आपको बता दें, ये थी जो आप जानकारी समाप्त कर रहे थे, ये थी मौसम विभाग से मिली जानकारी आने वाले दो दिनों के लिए।

श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के माध्यम से। आपको बता दें कि आज 4 बजे तक जो है कुल 23,516 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 14,942, महिलाएं 7,823, बालक 340, साधु 134, साध्वी 7, ट्रांसजेंडर 10 और सुरक्षा कर्मचारी 260। जो कुल मिलाकर ये संख्या 23,516 हो जाती है आज सुबह से लेकर 4 बजे तक।

0: यात्रा के विशेष प्रसारण में आप बने हुए हैं हमारे संग एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच न्यूज़ ऑन एआईआर एवं आराधना चैनल के माध्यम से, और इसके अलावा हम वेव्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी मात्रा में जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है, और आज भी हम कहेंगे हमारे आधार शिविर भगवती नगर से 10,000 के लगभग जो है, यानी बड़ी संख्या में लोग तीर्थ यात्रा के लिए आज वहां से रवाना किए गए। लेकिन यहां पर ये भी कहना चाहेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे तीर्थ यात्री भी होते हैं जो बिना पहले से रजिस्ट्रेशन कराए भी आ रहे हैं, और यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने जो मिलकर पहले से ही व्यवस्थाएँ रखी हैं, सुविधाएँ रखी हैं, इनसे हमारे तीर्थ यात्री जो हैं संतुष्ट तो हैं। लेकिन आपसे हम यहाँ पर निवेदन करना चाहेंगे सभी तीर्थ यात्रियों से कि जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन है जो है ज़रूर कराएं, पंजीकरण ज़रूर कराएं, और फिर अपनी फिर प्रतीक्षा करें। यहाँ पर जो ये कहना चाहेंगे आपसे कि पंजीकरण जो है बहुत ही ज़रूरी है, इससे क्या होता है कि आप किसी बाधा में नहीं आते और ना ही फिर आपको ज़्यादा प्रतीक्षा करने की जो है ज़रूरत पड़ती है। और ख़ासकर यहाँ पे अगर सुविधाओं की बात करें तो पिछले 10 साल से 100 बेड्स वाले हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर चल रहे हैं, जहाँ पर प्रतिदिन लगभग 2500 के करीब जो है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, यानी इस विभाग में हमारे यात्री जो हैं आ जाते हैं। लेकिन आपसे फिर एक बार यही निवेदन करेंगे कि पहले आप पंजीकरण कराएं और फिर इंतज़ार करें, फिर थोड़ा सा रुकें जब तक कि आपकी बारी जो है आ जाती है, तब तक आप प्रतीक्षा करें।
1: जी हाँ सायका, यहाँ पे जी सायका अपने श्रोताओं को ये भी कहना चाहेंगे कि इस वर्ष भी कई स्थानों पर टेंट एकोमोडेशन की व्यवस्था की गई है, कुछ स्थानों पर डॉर्मेंट्री और अन्य आवास सुविधाएं भी उपलब्ध है। यात्रियों को सलाह दी जाती है, जैसे कि अभी सायका ने बोला कि वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक माध्यमों से ही बुकिंग करें और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या दलाल के जासे में ना आए। यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु जो है पौने पालकी और पिट्ठू सेवा का भी उपयोग करते हैं। वृद्ध, देवयांग और शारीरिक रूप से कमजोर यात्रियों के लिए ये सुविधा काफी उपयोगी साबित होती है। इन सेवाओं का उपयोग करते समय ये सुनिश्चित करें कि सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति जो है या ऑपरेटर प्रशासन के साथ पंजीकृत हो। इससे क्या होगा, इससे सुरक्षा भी बनी रहती है और किसी प्रकार की असुविधा से भी बचा जा सकता है।
0: जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा शाहिन जी, और यहाँ पर जो है अपने श्रोताओं को हमारा एकमात्र जो है हेल्पलाइन नंबर भी देना चाहेंगे, जो है 9596990954 9596990954, जिस पे आप अपनी बात जो है, आपका कोई विचार जो है साझा कर सकते हैं, और ईमेल आईडी भी है, ये है akashvanibaltal@gmail.com, यानी akashvanibaltal@gmail.com, इस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना कोई विचार या अपनी अपनी कोई दुविधा जो है इस नंबर पर साझा कर सकते हैं। और साथ ही साथ टोल फ्री नंबर्स भी हम श्रीनगर के लिए अगर बात करें 1800-1807-199 पर आप श्रीनगर के साथ जुड़ सकते हैं, और जम्मू के लिए जो है हमारा हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800-1807-198, ये जम्मू के लिए है 1800-1807-198।
1: और साथ साथ हम श्रोताओं से ये भी बार बार कहते हैं कि अगर आप दर्शन रिक्शे जा रहे हैं तो आप ट्यून करेंगे एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, और अगर आप दर्शन के लिए पहलगाम के प्राचीन मार्ग से जा रहे हैं तो आप ट्यून करेंगे एफएम पहलगाम 100.1, और साथ

0: साथ DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं।
1: और एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि आप दिए गए, हम ये कहेंगे कि गाइडलाइंस का यानी नियमों का पालन जो है ज़रूर करें यात्रा, ताकि हमारी ये यात्रा जो है सुखद तरीके से चलती रहे।

0: लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: आकाशवाणी श्रीनगर के विशेष प्रसारण अमरनाथ जी यात्रा 2026 के आप जुड़े हुए हैं, जहाँ क्षण क्षण के अपडेट्स पहुँचाना हमारा यही प्रयास रहता है और जहाँ हमारा ये प्रयास रहता है कि क्षण क्षण के अपडेट्स आप तक पहुँचाए, वहाँ हमारे रिपोर्टर्स के यही दिन भर प्रयास रहता है कि वो आपको अपडेट करे। तो हमारे पास अपडेट आया है 4 बजे तक जो है 8,515 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन करके, भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करके दुमेल क्रॉस किया है। जहां एक बार फिर सुन लीजिए, 8,515 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके दुमेल क्रॉस किया है 4 बजे तक। संख्या की बात करें, पुरुषों की संख्या 7,240, महिलाएं 1,030, बालक 120, साधुज 49, साध्वीज 3 और सुरक्षा कर्मचारी 93। कुल मिलाकर जो है 4 बजे तक 8,515 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन हासिल करके बाबा भोलेनाथ के दुमेल क्रॉस किया है।
3: जी शाहिन जी, जहां आपने कहा कि 8,515 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के दर्शन जो है करके आज दुमेल क्रॉस किया है, पार किया है, वही हम बता दें कि यहां के व्यवस्थाओं को लेकर जो है हमारे श्रद्धालु बहुत प्रसन्न देखे गए। और यहां पर ये भी हम बताना चाहेंगे कि यहां प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं, यहां चाहे वो चिकित्सा अधिकारी हों, सुरक्षा अधिकारी हो, सफाई कर्मचारी हो, लंगर कर्मचारी हो, या अन्य जो भी इस यात्रा से जुड़ा हर व्यक्ति जो है इसी प्रयास में है कि ये यात्रा जो है सुखद तरीके से चलती रहे। और हम कहेंगे कि ये सभी जो है, इनमें से हर एक व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है और उनकी ही ये अनथक मेहनत है जो हमारी ये यात्रा जो है सफल हो रही है। और हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि कुछ ये इन व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु बहुत प्रसन्न देखे जा रहे हैं, संतुष्ट देखे जा रहे हैं, जो अपने विचार जो हैं इस तरह से हमारे साथ साझा कर रहे हैं।
4: हमारा यात्रा अभी कंप्लीट हो चुका है, हम लोग चंद्रवाणी पहुंच चुके हैं। पूरे रूट पे जेएनके पुलिस है, डिप्लॉयड है, आर्मी के साथ साथ वो भी काम कर रहे हैं, दोनों मिलके बढ़िया इंतजाम है। मतलब यहाँ पे काम चल रहा है तो जेएनके पुलिस के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी रहती है, क्योंकि कश्मीर में है तो अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। इतने सारे जो पिलग्रिम्स है, मतलब दर्शनार्थी है, मुझे नहीं लगता किसी कोई असुविधा होगा, होगी भी तो वो संभाल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। हैट्स ऑफ, आप इतने ऊपर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हैट्स ऑफ।

0: त्रिवेणी के चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: सर्व देवता च विश्वतारों के चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: श्री बद्रीनाथ केदारनाथ रामेश्वर जगन्नाथ श्री अमरनाथ सर्व तीर्थों के चरण कमलों

0: जी महाराज के चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: श्री बाबा रजाल साज, श्री बाबा निहाल साज, श्री बाबा कंगाल साज, श्री बाबा झेंकड़ साज, श्री बाबा मुस्ताक साज, श्री बाबा दीदार साज, श्री बाबा ब्रह्म साज, श्री बाबा संकट साज, श्री बाबा अनूप साज, श्री बाबा बजान साज, श्री बाबा बहादुर साज, श्री बाबा महबूब साज, श्री बाबा तनक शाह जी महाराज। बंद के वाले होंगे चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: साढ़े बारह घरानों के चरण कमलों में ध्यान करके बोलना
1: श्री राम श्री राम श्री राम।
0: गुरु महाराज सच्चे पिता जगत के वाले, चार पहर दिन सुख का बिताया है, चार पहर रात्रि भी सुख की बितानी है, आठों पहर सुखाले सुख करे, सवालियों के सवाल पूरे करे, बंदी मानव की बंद खलाश नगर खेड़ाया वाद रहे, राजा राज करे प्रजा सुखी बसे, साधु का शंकर मुक्का मिल, भजन का प्रताप दुख कलेश का नाश, अड़े सो झड़े शरण पड़े तो तरे, काम सच्चे वाचा सुत्र महाराज आप करें डेरा।

संध्या समय की अरदास तेरे सचखंड में प्रवान अक्षरवाधि घाटे भूल जोग वक्षणहार सद्गुरु बाबा सुंदरेशा जी महाराज करो प्रवान प्राणी मात्र का हो कल्याण शुरू करो दंडवती ये वंदना सर्व कला।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और आपको बता दें कि आज 4 बजे तक कुल मिलाकर 23,516 तीर्थ यात्रियों ने जो है बाबा भोले के दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 14,942, महिलाएं 7,823, बालक 340, साधु 134, साध्वी 7, ट्रांसजेंडर 10 और सुरक्षा कर्मचारी 260। और यूं हम ये बता सकते हैं कि कुल मिलाकर ये संख्या जो है आज 4 बजे तक की जिन्होंने बाबा भोले के दर्शन किए हैं हो जाती है 23,516।
1: जी हाँ श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी 2026 के साथ। तो आप आरती का आनंद ले रहे थे, इसी के साथ ही आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे मंजूर अहमद नजार, इरशाद नायकू और शौकत अहमद खान। मैं आपके साथ ही उद्घोषक शाहिना ऋषि और मेरे साथ उद्घोषक सायका सलीम।
0: और श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूकवानी, श्री सुरेश चंद मीना और श्री गुलाम रसूल आखून। और प्रातः 7 बजे श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण लिए आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि।

सीता पंचवटी में स्वर्णमृग को देखकर मोहित होकर राम जी से स्वर्णमृग मांगने का प्रस्ताव रखती हैं।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

आज हम आपको इस विशेष नाटक की चौथी कड़ी सुनवा रहे हैं। पिछली कड़ी में आप माता कैकेयी के हठ और कोप भवन का प्रसंग सुन चुके हैं। वचन से आबद्ध पिता के सम्मान के लिए प्रभु श्री राम सीता और

0: तमसा नदी के तट पर शोक और थकान के कारण सब लोग सो गए। दो प्रहर रात्रि बीत जाने पर रथ के निशान छिपाते सीता और सचिव के साथ दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे।
1: प्रभु के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम।
2: बैठो निषादराज, सब कुशल तो है?
1: आपके चरण कमल के दर्शन से मैं सकुशल हूँ। परिवार सहित मैं आपका सेवक हूँ। कृपा कर मेरे श्रृंगवेरपुर में पधारे, जिससे आपकी कृपा से मेरी प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो।
2: सखे, तुमने सच कहा है, किंतु पितृ आज्ञा बरस चारि दस बासुबन मुनिप्रत बेशु आहारु, ऐसी दशा में ग्राम बासु नहीं उचित।
0: निषाद राज को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने श्री राम के लिए सब प्रबंध कर दिया। श्री राम ने संध्या आदि से निवृत्त होकर शयन किया। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिवही सोवन मृदु बानी। कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। निषाद राज लक्ष्मण के पास आ बैठे और कहने लगे,
1: लक्ष्मण जी, इंद्र महल से भी अधिक सुहावना अयोध्या का राजमहल है। वहां की सुख सुविधाओं में सोने वाले सीताराम रति और कामदेव के दर्प को अपनी शोभा से मर्दित करते थे, वही आज सोवत महे विधि बामन के ही।
3: निषाद राज, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघ पीर चरण रथ होहु।
1: आप यथार्थ कहते हैं। अरे, बातों ही बातों में सगया हो गया।
4: तात, कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई।
2: तात सुमंत्र, आपने धर्म के सारे सिद्धांतों का संचय किया है, आप भले प्रकार जानते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, मेरी ओर से आप पिताजी के चरण स्पर्श कर कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करें और उनसे निवेदन करें कि मेरे लिए किसी बात की चिंता वे ना करें। आपका भी यही कर्तव्य है, आप हम लोगों की चिंता में पिताजी को कोई कष्ट ना होने दें।
3: खेके से प्रतिज्ञा करते समय उन्हें कष्ट नहीं हुआ?
5: लक्ष्मण, ये बड़ी अनुचित बात है।
2: सुमंत्र जी, आपको मेरी शपथ है, लक्ष्मण का संदेश वहां जाकर न कहना।
4: सीता जी वन के दुखों को न सह सकेंगे, इसलिए सीता जी के अयोध्या लौटाने का उपाय आप और हम करें, ये भी महाराज का आदेश था। अन्यथा उन्होंने कहा था कि मैं उसी प्रकार नहीं जी सकूंगा जैसे जल के बिना मछली।
2: सीते, यदि तुम अयोध्या लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन तथा परिवार सबकी चिंता में

0: प्रभु, आप करुणा सागर और परम विवेकी होकर ऐसा कहते हैं? क्या तन को छोड़कर छाया और सूर्य को छोड़कर प्रभा कहीं विलग रह सकती है?
1: किंतु राजकुमारी जी,
0: बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने हो सुखद न लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, कर के हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा।
1: मैं अयोध्या लौटकर कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? महाराज को क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा?
0: सासु ससुर सन मोरे होती, बिनय करबि परि पाए। मोर सोच जनि करई कछु, मैं बन सुखी सुभाए। और फिर प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, बीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग शमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिए जनि भोरे।
2: सीता की शीतल वाणी सुनकर मणिहीन सर्प की भांति सुमंत्र व्याकुल हो गए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए।
3: प्रिय केवट, गंगा पार जाने के लिए नौका ले आओ।
2: नहीं महाराज, तुम्हार मर्म में जाना।
3: क्या कह रहे हो तुम?
2: चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछु ऐही।
3: कहां चरण और कहां चढ़ी?
2: जी हां, जानता हूं आपके चरण स्पर्श से शिला सुंदरी बन बैठी थी और लकड़ी तो पत्थर से भी कोमल है। यदि मेरी नौका मुनि की स्त्री बन बैठी तो मैं तो लुट जाऊंगा। यही तो मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण का सहारा है, और कोई दूसरा रोजगार भी तो मैं नहीं जानता। मेरी तो केवल इतनी ही विनती है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो। मोहि राम रावरी आन, दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहूं लखन, पै जब लगिन पाए पखारी हो। तब लगिन तुलसी दास, नाथ कृपाल पार उतारी हो।
3: सीते, लक्ष्मण, देख रहे हो केवट की चतुराई? अच्छा भाई, वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जा जल्दी कर, जल्ला पैर धोले और शीघ्र पार उतार।
4: केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पद पखार कर जलपान करके केवट ने परिवार सहित अपने आप को धन्य माना, फिर प्रसन्नता पूर्वक श्री राम को गंगा पार ले गया।
1: लीजिए महाराज, अब आप गंगा पार आ गए।
3: अरे, हमने इसे कुछ भी नहीं दिया।
0: ये मणियों की मुद्रिका ही इसे दे दो।
3: केवट, पार की उतराई ले लो।
1: नाथ, आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बन भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा।
0: नहीं केवट, तुम्हें उतराई ले लेनी चाहिए।
5: अरे, तुम अपनी मजूरी लेने से इनकार कर रहे हो? कैसे केवट हो तुम?
1: मैं तो केवल प्रभु के चरणों में भक्ति चाहता हूँ।
3: तथास्तु।
4: इसके पश्चात श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, सीता और निषाद राज के साथ तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। त्रिवेणी में स्नान कर श्री राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनिवर ने श्री राम जी के दर्शन कर अपने आप को धन्य माना। रात को आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातः काल

0: प्रयागराज का स्नान कर मुनि को सिर नवाकर वे वहां से चल दिए। फिर उतरी नहाई जमुन जल जो शरीर समस्याम। श्री राम जी ने निषाद राज को समझा बुझाकर विदा कर दिया। वे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे चले।
1: अरे आओ आओ, उनके दर्शन कर इसी क्षण नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लो।
2: भद्र, कैसी शीतल छाया है। हमने नरम घास और कोमल पत्ते बिछा दिए हैं, आप लोग थक गए होंगे। खबर यहाँ बैठकर थकावट दूर कर लीजिए,
1: फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे।
3: आप लोग व्यर्थ कष्ट न करें, आपकी कृपा के लिए हम अनुग्रहित हैं।
2: यह लीजिए, आपके लिए शीतल जल है, आचमन तो कर लीजिए।
3: सीते, लक्ष्मण, जल ग्रहण करो।
4: धन्यवाद।
1: चलिए हम आपके साथ आगे तक चलेंगे।
3: नहीं नहीं, आप लोग हमारे लिए कष्ट न करें, कृपया लौट जाइएगा।
4: चलो आओ आओ, चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो। सखी, कैसे माँ बाप है इनके, ऐसे कोमल बालकों को वन में भेज दिया। विधाता की कठोरता को कौन दोष दे सकता है भला। आह, कितने सुंदर है ये।
5: वाह,
4: इन्हें देखकर थके नारी नर प्रेम प्यासे मनहुम्रे के मृग देख ही दिया से।
5: आओ चले इनके पास चलकर इनसे कुछ पूछें।
4: चलो राजकुमारी, विनय हम करही, तिया सुभाए कुछ पूछा तो डरही।
5: स्वामी, अभिनय क्षम भी हमारी, बेलगु न मानव जानी गवारी।
4: कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे।
6: सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे।

0: ही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। आगे राम लखनु बने पाछे, तापस बेख विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। इसी प्रकार देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए।
1: हे मुनिनाथ, आप त्रिकालज्ञ हैं, आपकी हथेली पर सारा संसार बेर के समान है। माता कैकेयी के व्रत निर्वाह के लिए पिता की आज्ञा का पालन और भरत जैसे भाई का अकंटक राज तिलक हो, इस कारण मैं वन आया हूं। यहां आकर आपका दर्शन हुआ, वह मेरे पुण्य का प्रभाव है।
2: साधु साधु, राम आप रघुवंश के पताका हैं। ऐसा कहना आपके लिए सहज और सरल ही है। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाए कृपा निधि।

0: ज्ञान की। जो सहस शीशु अहिषु महिधर लखनु सचराचर धनी सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनी।
1: मुनिवर, यह सब आपके पुण्य प्रताप का ही फल है, मैं तो आपका।
0: आपके संबंध में और क्या कहूं, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह जगपेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावनि हारे तेउ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्ही को जानि निहारा सोई जानै जहि देव जनाई जानत तुम्ही तुम्हें हो जाए। राम देख सुनी चरित तुम्हारे जड़ मोहि बुध हुए सुखारे तुम जो कहो करो सब साचा जस काछिए तस चाहिए नाचा।
1: मुनिवर आज्ञा दें, मैं कहाँ वास करूं।
0: ए राम, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप ना हों वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। अधिक क्या कहूं, जस तुम्हार मानस विमल हंस ने जी हां त्यासु मुक्ताहल गुन गन चुनई राम बसहु हिया तासु स्वामी सखा पितु मात गुर जिनके सब तुम तात मन मंदिर तिन कई बसहु सीय सहित दो भ्रात।
2: महामुनि वाल्मीकि ने श्री राम जी की सर्वव्यापकता और उनके व्यास से सत्पुरुषों की महिमा का विस्तार से वर्णन कर चित्रकूट की अपरिमित महिमा का भी बखान किया। श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी समेत चित्रकूट पर निवास करने लगे। इधर तो श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी वन में निवास कर रहे हैं, उधर जिस प्रकार सुमंत्र अयोध्या आए वो कथा सुनिए।

0: லக்ஷ்மன், சீதா, ஹரா, லக்ஷ்மன்.
1: அப்னே மன் மே பாந்தி பாந்தி கே விசார் கர்த்தே, ஸ்வயம் கு பாபி ஔர் அபராதி மானதே ஹுயே, சோகாகுல் சுமந்திர கிசி பிரகார் அயோத்தியா பஹுஞ்சே. நகர் மே பிரவேஷ் கர்த்தே சுமந்த் ஏசே சப் ஜாதே ஹே மானோ கிசி கி ஹத்யா கர்கே ஆயே ஹூம். உன்ஹோனே சாரா தின் ஏக் பேட் கே நீச்சே பைட் கர் பிதாயா. சந்தியா கே சமய் அந்தேரா ஹோ ஜானே பர் உன்ஹோனே நகர் மே பிரவேஷ் கியா ஔர் ரத் கோ த்வார் பர் ஹி கடா கர்கே சுப்சாப் மஹல் மே குசே. ரத் கோ பஹச்சான் கர் ஔர் கோடோ கோ வியாகுல் தேக் கர் லோக் விஷாத் கிரஸ்த் ஹோ உடே.
2: ஜய ஜீ மஹாராஜ் கே சரணோ மே சுமந்த்ர கா தண்டவத் பிரணாம் ஸ்வீகார் ஹோ.
0: சுமந்த்ர கஹோ ராம் கஹாஂ ஹே, இதர் ஆஓ சுமந்த்ர, இதர் துமே அப்னே ஹ்ருதய சே லகா லூ. राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही. उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए. सखा राम उसी लखु जय तामो ही पहुंचाओ, ना ही तो चाहत चलन अब प्राण कहूं सती भाव.
2: महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाण ये सोच सकल हितकारी. महाराज श्री राम ने गुरु वशिष्ठ भरत पुरवासी आदि सभी को सांत्वना के संदेश दिए हैं और भरत जी से कहने के लिए कहा है कि वे सब माताओं की समान सेवा करें और पिता को उसी प्रकार रखें जिससे जिससे उनको कभी मेरी चिंता ना हो.
0: और लक्ष्मण तथा सीता ने कुछ नहीं कहा?
2: सीता जी कुछ कहना चाहती थी, उनकी वाणी अवरुद्ध थी, स्नेह से शिथिल, वे कुछ कह नहीं पाई.
0: सुमंत कृपालु राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरे स्नेही राम कहाँ है, मेरी प्रिय पुत्र वधु जानकी कहाँ है. राम कौशल्या श्रवण कुमार ये कथा तो तुम जानती ही हो, वही शाप अब मुझे लगा है, वही शाप मुझे लगा है. राम के बिना इस अवस्था में कैसे मैं जीवित रह सकूंगा, हमें धिक्कार है. प्रेम का प्रण निभाने वाले इस शरीर को धारण करके ही क्या करूंगा.
3: और रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिना जिये बहुत दिन बीते, जानकी लखन रघुवर पितु हित

0: 진짜 딱 14살 사랑 사랑 사랑
1: 마라 마라 마라 마라

0: राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुर धाम। प्रातः काल होने पर मुनि वशिष्ठ ने समयानुकूल सब प्रकार का इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रख दिया गया। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे, उन्हें बुलाने के लिए दूत भेज दिए गए। उनसे कह दिया गया कि अयोध्या का किसी भी प्रकार का कोई समाचार उनसे न कहें। किसी प्रकार दोनों भाई अयोध्या आए। नगर में प्रवेश करते समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते, उनके मन में भय और विषाद व्याप्त है। पुत्र को आया जान कैकेयी हर्षित होकर दौड़ी और दोनों भाइयों को राजभवन में ले आई। भरत को उदास देखकर पूछने लगी,
1: हमारे नैहर में कुशल तो है?
2: हाँ, सब कुशल है। पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी तथा प्रिय भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं?
1: तात, बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछु काज विधि बीच बिगारो, भूपति सुरपति पुर पगु थारो।
2: तात, तात,
1: भरत,
2: भरत, अंत समय में आपका दर्शन न कर सका और आप मुझे राम जी को सौंप भी नहीं गए। माँ, पिताजी की मृत्यु का कारण तो बताओ।
1: बेटा भरत, राजा से मैंने दो वर मांगे थे, राम 14 वर्ष का वनवास करे और तुम्हारा राज तिलक हो। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, परिणाम स्वरूप राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। तात, राव नहीं सोचे जो
2: पापिन सबहि भांति कुल नासा। यदि तुम्हारी ऐसी ही कुरुचि थी तो पैदा होते ही तुमने मुझे मार क्यों नहीं डाला?
1: बेटा,
2: पेड़ को काट कर पत्तों को सींच रही हो, तुमने तो मछली के जीवन आधार पानी को ही उलीच दिया। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी, तू जननी भाई विदेशन कछु न बसाए।
1: बेटा,
2: हाय, जब तय कुमत कुमत जी अठयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयो, परमागत मन भई नहीं पीरा, करिन जी मुह परे उन कीरा। पर मुझे तो आश्चर्य इस बात पर होता है कि भूप प्रतीत तोरी किमिकी नहीं, मरण काल विधि मति हर लीनी।
1: लेकिन बेटा, मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मैं तुम्हारी मंगला कांक्षिणी हूँ।
2: सच पता तू कौन है से अधिक प्रिय मानते हैं, वो भी तुझे अप्रिय जान पड़े।

0: जो हसे सो हसे, मुंह मसिलाए, आंखें उठी उठी बैठ ही जाए।
1: बेटा,
2: तू रोक भी।
0: कई कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तभई काहे न बाझा। धिक्कार है मुझे।
1: हे पुत्र, तुम ठहरे था
0: जननी, जे अघ मातु पिता सुत मारे, काय गोठ बहुसुरपुर जारे, जे अघ तिय बालक बध कीने, मीत मही पति बाउर दीने, जे पातक उपपातक आही, करम बचन मन भव कवि कही, ते पातक बोहि हो विदाता।
1: बेटा,
0: जो यहु हो मोर मत माता, जे परि हरि हरि हर चरण, भजहि भूत कन घोर, ते कई गति बोहि देउ विधि, जो जलनी मत मोर।
1: हे तात, विधु विष चवे स्रवे हिमु आगे, होई बारी चर बारी बेरागी, भये ज्ञानु परु मिटे न मोह, तुम्हार राम ही प्रतिकूल न हो।
3: आस कही माँ तू भरत हिये लाए, थन पय स्रवही नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। सवेरा होने पर मुनिगण राज परिवार के लोग आदि एकत्र हुए। फिर नृपतनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमानु बनावा, गही पद भरत माँ तु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी, यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी, सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन्ह भरत दस गात विधाना। सब क्रियाओं से निवृत्त हो जाने पर राजसभा बैठी। मुनि वशिष्ठ आदि ने भरत को अनेक प्रकार से सांत्वना दी और समझाया।
4: वत्स, आओ मेरे पास बैठो। सुनो भरत भावी प्रबल, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, अस विचार के ही देइए दोसु, व्यर्थ का ही पर कीजिए रोसु, तात विचार करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृप नाही।
5: लेकिन
4: भरत, राजा को अपने वचन प्रिय थे न कि प्राण, उनके प्रिय वचन का पालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।
5: आप कह तो रहे हैं पर
4: भरत, सबकी यही सम्मति है कि राज तिलक उसी का होता है जिसे पिता टीका दे। कल्याण समझकर मेरी बात मानो। हाँ, जब राम लौट आए तब तुम उन्हें राज्य सौंप देना और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना।
1: हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा का आदर करना चाहिए और उसे कल्याण प्रद मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति समझकर दुख को त्याग देना चाहिए।
5: आप लोग मुझे वही शिक्षा दे रहे हैं जिसमें मेरी भलाई है, ये मैं भली भांति जानता हूं, पर मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही, शोक समाज राज कहि लेखें, लखन राम सिय पद बिनु देखें। आप सब आज्ञा दें, मैं राम के पास जाऊं, मेरा कल्याण इसी में है।
1: बात मानो बेटा, तुम पर ही सबका ध्यान है, उठो।
4: वत्स, कौशल्या की बात मानो, वे ठीक कह रही हैं, उठो और पश्चाताप मत करो।
5: मेरा जन्म तो रघुनाथ को वन भेजने के लिए हुआ था, अभागा मैं झूठ मूठ ही पछता रहा हूं, किंतु आपने दारुण दीनता कहूं सब ही सिरुनाई, देखें बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरन न जाए, आन उपाव मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिन बूझा, एक ही आंक इहई मन माही, प्रात काल चलि हऊं प्रभु पाही।
2: धन्य धन्य है महाराज भरत,
6: धन्य है महाराज भरत।
5: पंचो, आप लोग मुझे आज्ञा और आशीष दें, इसमें ही मेरी भलाई है। मेरी विनती सुनकर मुझे अपना मान राम अयोध्या लौट आएंगे, मुझे राम का भरोसा है।
2: महाराज भरत की जय। महाराज भरत की जय।
4: भरत जी का निर्णय सुनकर सबके मन में अपार प्रसन्नता हुई, सभा विसर्जित हो गई। सब लोग अपने अपने घर जाकर प्रातःकाल यात्रा की तैयारी करने लगे। कहां ही परस्पर भा बड़ काजू, सकल चले कर साजे ही साजू, जे ही राख ही रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन ही मारी। प्रातःकाल होने पर भरत जी ने मंत्रियों को बुलाया, उनसे कहा कि राज तिलक का सारा सामान साथ ले लो। मुनि वशिष्ठ वन में ही श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। माताओं को आर्त जानकर उनके लिए भी पालकियां सजाई गईं। पूरी तैयारी करके अपार जन समूह के साथ भरत जी वन को चले।

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक है सद्गुरु साहिब। जो ये सत्य जान जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं।

मन मक्का दिल द्वारी का काया काशी जान दस द्वारे का तेहरा कामे ज्योति पिछान ईश्वर अंश जीवा विनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में किंते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई।

जी जा रही है।

नाव मझधार में आने, आधी उठता प्रचंड, आधी उठता